ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की नवी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे यहाँ से आज पूरे दिन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:10 पर आप सुनिए चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा। 6:15 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत बहार आप सुनिए सुबह 6:45 पर। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा 7:20 पर और दैनिक कार्यक्रम नमस्कार चूरू होगा 7:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे चर्चा दादा भाई नौरोजी पुण्यतिथि। एक और चर्चा होगी ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव। समाचार संध्या का अंक माफ कीजिए समाचार प्रभात होगा सुबह 8 और मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए सुरसंगम। 9 सुन सकते हैं हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। देशगान का समय रहेगा सुबह 9:10 का। सुबह 9:15 पर आप सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका। इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विभिन्न प्रकार के न्यूरो रोग और उसके निदान विषय पर डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल से अमित कुमार की बातचीत। फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक होगा सुबह 9:30 से 10 आप सुनिए हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। 11:05 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर कलाकार मांगीलाल पुजारी एंड पार्टी। 1:05 पर महिलाओं के लिए होगा कार्यक्रम महिला जगत। मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2:00 से 2:15 पर आप सुनिए दोपहर समाचार। 3:00 हमारी प्रातःकालीन सभा का समापन।

दिन में 2:30 पर आप सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम तराने नए पुराने। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी के साथ। 5:55 पर आप सुनिए कार्यक्रम विवरण। 6 बजे आप सुनिए हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे। 6:05 पर देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनिए शाम 6:10 पर। शाम 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे। शाम 6:30 पर हिंदी में और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित करेंगे। जयपुर से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। शाम 7:30 पर आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। शाम 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेत किसान वाणी। शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी लोक संगीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता होगा रात्रि 8 बजे से। रात्रि 9:15 पर आप सुनिए फरमाइश कार्यक्रम मन भावन। 10 बजे आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। 10:30 पर लोक संगीत।

हम आपको पुनः बता दें, रात्रि 9 बजकर 15 मिनट पर सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन, और 10 बजे आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। लोक संगीत का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजकर 30 मिनट से। सभा के अंत में यानी रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। चिंतन में आज हम चर्चा करेंगे पुस्तकों के बारे में। पुस्तकें मित्र और सच्ची पथ प्रदर्शक हैं। श्रोताओं, किताबें हमारी सच्ची और अच्छी दोस्त हैं और दुनिया के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका किताबें होती हैं। किताबें पढ़ने से दुनिया के प्रति हमारा नजरिया काफी हद तक बदलता है। हमने बड़ों से बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन समय के साथ हमारे ज्यादातर परिवार, पिता माता और बच्चे तक ही सीमित रह गए हैं। वो दिन चले गए जब दादा दादी अपने पोते पोतियों के बगल में सोते थे और उन्हें सोने से पहले कहानियां सुनाया करते थे। अब सब कुछ किताबों और सारा कुछ ऑनलाइन की कहानियां हैं। चाहे कुछ भी हो, किताबें कई लोगों की साथी बनी हुई हैं। श्रोताओं, पुस्तकें ज्ञान और सूचना के केंद्र हैं। ये हमें हमारी जानकारी एकत्रित करने और उसे बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती हैं। विभिन्न पुस्तकें पढ़ने से हमारी शब्दावली और कल्पना शक्ति बढ़ती है। ये मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं और उसके जीवन शैली में भी बदलाव लाती हैं। विभिन्न विद्याओं की पुस्तकें पढ़ने से हमें कई तरह से सोचने और उनका विश्लेषण करने में मदद मिलती है। इससे हमें दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। पुस्तकें पढ़ते समय हम दुनिया के लेखक के नज़रिए, यानी हम दुनिया को अपने तरीके से और लेखक के नज़रिए से देखते हैं। कई आत्मकथाएं और जीवनियां मनुष्य को सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। पुस्तकें हमें सामान्य मानव संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं, बताती हैं।

श्रोताओं, किताबें इंसान की सबसे अच्छी साथी और दोस्त हो सकती हैं, क्योंकि किताबें और उनका जीवन के किसी भी पड़ाव पर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। किताबें ज्ञान और सूचना का काम करती हैं। श्रोताओं, इसके अलावा किताबें विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है। किताबों में हर समस्या का हल होता है और वे सबसे अच्छी मित्र और पथ प्रदर्शक होती हैं, जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। विभिन्न तरह की किताबें पढ़ने से हमें आत्मज्ञान मिलता है। जब हम परेशान या निराश होते हैं तो किताबें सबसे अच्छा हमारा सहारा बन सकती हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें कोई भी किताब उठाकर पढ़ सकते हैं, उसे पढ़नी चाहिए और अपने मन को प्रेरित हमें कर सकते हैं। आत्मकथाएं और जीवन परिवर्तनकारी अनुभव से भरी प्रेरणादायक पुस्तकें, किताबें अनुभवी लोगों द्वारा लिखी जाती हैं, जो मुख्य रूप से अपने अनुभवों और जीवन से मिले सबक के बारे में लिखते हैं। विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने से हमारे रचनात्मक और शब्दावली दोनों में बढ़ोतरी होती है।

साथियों, किताबें हमारे दिमाग को ज्ञान से समृद्ध करती हैं। अच्छी किताबें पढ़ने से दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकता है। ये हमें चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखने और हमारी कल्पना और सोचने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। किताबें पढ़ने से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम किताबों से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के बारे में सीखते हैं। किताबें लोगों को दुनिया के बारे में नया और रोचक ज्ञान देकर मानसिक रूप से विकसित होने में मदद कर सकती हैं। लोग

किताबों से अच्छे और बुरे कर्मों, सकारात्मक और नकारात्मक बातों के बारे में सीखते हैं, सोचते हैं। किताबों के बारे में कई प्रकार की किताबें होती हैं, जिनमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, कविता और आत्मकथाएं कुछ प्रमुख हैं। बहुत सी प्रेरक और प्रेरणादायक किताबें जो लोगों को प्रेरित कर सकती हैं और उनके जीवन को बदल सकती हैं। बहुत सी किताबें पढ़ने से दुनिया को देखने का हमारा तरीका बदल सकता है और हमारे भीतर अच्छी ऊर्जा का संचार होता है।

साथियों, किताबों को अक्सर ज्ञान का विशाल सागर कहा जाता है। ये विश्व भर के ज्ञान का विशाल भंडार है। किताबें बचपन से ही हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। ये हमें सही रास्ते पर चलने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करने में मदद करती हैं। हर व्यक्ति को अपनी पसंद और रुचि के अनुसार किताबें चुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। चिंतन अभी आपने सुना, आकाशवाणी का ही चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, कलाकार सीमोन शाह, सुरेश वाडकर और उनके साथी। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत बहार। सबसे पहले सुनते हैं आशा भोसले और अनवर को। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता। गीतकार निदा फाजली, संगीतकार खयाम।

शरों किन्हीं कारणों से गीत आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है एतवार, गाया है आशा भोसले और भूपिंदर ने। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार बप्पी लहरी।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है अनीता, गीतकार राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

ये आवाज है मोहम्मद महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत बहार अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान, कलाकार उत्तरा केलकर और संगीत सतीश भाटिया, एपिसोड नंबर 14।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं, उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ बाबूलाल। करेंगे चर्चा दादा भाई नौरोजी पुण्यतिथि पर। एक और चर्चा होगी ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव, साथ ही साथ चर्चा

श्रोताओं, आज दादा भाई नौरोजी का उनकी पुण्यतिथि है। दादा भाई नौरोजी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था और उनका निधन आज ही के दिन यानी 30 जून 1917 को हुआ। वे एक अच्छे नेता और समाज सुधारक थे और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई सांसद बने। उन्होंने ड्रेल ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत करके बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत की आर्थिक संपदा को बाहर ले जा रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भारतीय अर्थनीति की आलोचना का आधार बनी। दादाभाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक रहा है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चुरू और हम चर्चा कर रहे थे दादा भाई नौरोजी पुण्यतिथि के बारे में। अपने लंबे जीवन में दादा भाई ने देश की सेवा के लिए जो बहुत से कार्य किए, उन सब का वर्णन करना समयाभाव के कारण यह संभव नहीं है, किंतु सुशासन के लिए अखिल भारतीय कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उनके द्वारा की गई मांग की चर्चा करना अति आवश्यक है। उन्होंने अपने भाषण में स्वराज को मुख्य स्थान दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, हमें कोई कृपा की याचना नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए। आरंभ से ही अपने प्रयत्नों के दौरान मुझे इतनी असफलताएं मिली जो एक व्यक्ति को निराश नहीं बल्कि विद्रोही भी बना देती हैं, पर मैं हताश नहीं हुआ और

मुझे विश्वास है कि उस थोड़े से समय के भीतर ही, जब तक मैं जीवित हूं, सद्भावना, सच्चाई तथा सम्मान से परिपूर्ण स्वायत्त शासन की मांग को परिपूर्ण करने वाला संविधान भारत के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। उनकी यही आशा उस समय पूरी हुई जब वे सार्वजनिक जीवन से अवकाश ग्रहण कर चुके थे। पूर्व और पश्चिमी कार्यकर्ता तथा उनके मित्र भारत की नई पीढ़ी की आशाओं के अनुसार संवैधानिक सुधारों को मूर्त रूप देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने में व्यस्त थे। श्रोताओं, परंतु 20 अगस्त 1917 की घोषणा के 2 महीने पूर्व दादा भाई की मृत्यु हो चुकी थी। इस घोषणा के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में अधिकाधिक भारतीय सहयोग तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत क्रमशः भारत में उत्तरदायी शासन के विकास के लिए मार्ग तैयार हुआ। इस प्रकार भारत के इस वयोवृद्ध नेता ने जो मांग की थी, उसकी बहुत कुछ पूर्ति का आश्वासन मिला और वो पूरी भी हुई।

जी हाँ श्रोताओं, धरती हमें कह रही है पुकार के कि हम प्रदूषण को बिल्कुल ना करें और ऐसे पदार्थों को ना काम में लें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हों, जैसे प्लास्टिक को कभी ना जलाएं और ऐसे कई ज्वलनशील पदार्थ हैं जिनका हम प्रयोग करें तो हमारे पर्यावरण को खतरा पहुंचता है, ऐसे पदार्थों को बिल्कुल भी ना काम में लें। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार चूरू और हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव। मानवीय गतिविधियां विशेषकर जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई के कारण पृथ्वी के औसतन तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु में गंभीर बदलाव, ग्लेशियरों का पिघलना और भी कई खतरे हमारे सामने आ रहे हैं, उसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम बात करें और ऐसे कारकों की जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे कई ऐसे परिणाम हमारे सामने आए हैं, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का बढ़ता जल स्तर और अत्यधिक चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, इसी के कारण हो रही है। और इसका प्रभाव की बात करें तो हाल के दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है, जिसमें गर्म हवाएं जैसे हीट वेव्स और जंगलों में भीषण आग की घटनाएं काफी हद तक बढ़ रही हैं। आर्कटिक, अंटार्कटिका और दुनिया भर के पर्वतीय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। साथ ही साथ ग्लेशियरों के पिघलने और गर्म पानी के फैलाव के कारण समुद्र का स्तर हर साल बढ़ रहा है, जिससे तटीय शहरों और द्वीपों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। कई भयंकर सूखा तो कई मूसलाधार बारिश और विनाशकारी चक्रवातों की आवृत्ति में भारी वृद्धि हुई है। मौसम के मिजाज में अप्रत्याशित बदलाव और पानी की कमी से कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, जिससे वैश्विक स्तर का खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार चूरू, और बात करे थे ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों के बारे में। वैश्विक तापन पृथ्वी की सतह का दीर्घकालीन तापन है, जो औद्योगिक क्रांति से पहले के काल से मानवीय गतिविधियों के कारण देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, गैस और कोयले का जलना है। जलने पर ये ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को रोककर उसे गर्म कर देता है। वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे सूखा, समुद्र तट स्तर में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली भीषण गर्मी, बड़े पैमाने पर जंगल की आग और मौसम के मिजाज में गड़बड़ी। इन प्रभावों का असर सभी क्षेत्रों और लोगों पर समान रूप से नहीं पड़ता, कुछ क्षेत्र और लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि हमारे जीवन के सामने अब तक की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है, और यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके परिणाम अंततः पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करेंगे और बड़ी त्रासदी हमारे सामने आ सकती है।

जी हाँ श्रोताओं, अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और इसके प्रभावों के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा घर स्वर्ग जैसा नहीं हो सकता। इसमें कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं, मक्खी मच्छरों की तो बात ही आप छोड़ें, हमारे स्वास्थ्य भी काफ़ी हद तक इसमें प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस ओर ध्यान दें और अपने घर परिवार का भी पूरा ध्यान रखें।

अक्षरों अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर रखना है तो ग्लोबल वार्मिंग की ओर हमें ध्यान देना होगा और पर्यावरण के प्रति हमें काफी हद तक सचेत रहना होगा। ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार चूरू। इस कार्यक्रम से हमें दे अनुमति, फिर मिलेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी

0: निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी, 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका

0: उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जन

0: भारतीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुख्य पृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रूपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत जो आधारित गैर फिल्मी गजलों पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।

FM 107.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटन

पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1

0: केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे। हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
1: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled, data driven and secure digital governance रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय

0: क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
1: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बनाया ताकि खिलाड़ी भी परेशान हो वॉक। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
2: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की कर रहा है जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित रूप से है विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंच गौरव योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खेजड़ी वाटिकाएं बनाई है जिन जो कि चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
0: और अब मौसम। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान।

0: देशगाना भी आपने सुना। हम आकाशवाणी के चूरू के अंदर से ही बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य आपका। इसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता, विषय विभिन्न प्रकार के न्यूरो रोग और उसके निदान विषय पर डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल से अमित कुमार की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अमित कुमार सैनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। अच्छा स्वास्थ्य होने से न सिर्फ हमारा जीवन स्तर है वो सुधारता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन स्तर को और आगे तक हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और वर्तमान में दिनों दिन नए नए रोग है वो हमारे सामने उभरते हुए आ रहे हैं। खासकर हमारे शेखावाटी अंचल में जो न्यूरो से संबंधित रोग है या स्पाइन रोग है, जो हड्डी के रोग है, उन जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग है, उनके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस विषय पर हमने आज बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी को। आप वरिष्ठ न्यूरो एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। तो आजकल शेखावाटी क्षेत्र में स्पाइन डिस्क की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम पहले इतने केस नहीं आते थे, लेकिन आज गली गली में इस रोग के केसेज आ रहे हैं। तो क्या कारण है और किस प्रकार से इस रोग से हम निजात पा सकते हैं?
2: देखिए, कमर में दर्द एक आम समस्या है, जिसमें कि ये रहता है कि भाई कमर में

0: दर्द जो भी बहुत यंग एज में स्टार्ट हो गए हैं और उसमें स्टार्ट सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। कमर में दर्द क्यों होगा? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, मेनली जो बोन का जो स्ट्रेंथ है, मसल का जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है। जैसे कि यहाँ के पानी में अगर फ्लोराइड है तो उसकी शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि फ्लोराइड जितना जमा होगा, जितना बोन हार्ड ब्रिटल होगी, तो स्लिप डिस्क की समस्याएं बढ़ती चली जाती है। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो रहन सहन है वो सारा का सारा गाड़ियों पर रुस्तरा हो गया। एक्सरसाइज और चलने फिरने की तरफ आपका बिल्कुल भी, बहुत कम लोग या तो बैठे रहेंगे या गाड़ियों से इधर उधर जाएंगे। उसमें आपकी मसल, जो बैक मसल्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, और जब वो नहीं डेवलप हो पाती तो फिर आप बड़े, जब वजन के काम करते हो या कहीं पे झटका लगता है तो उसमें तो बॉन्ड टूट जाती है या स्लिप डिस्क हो जाती है। लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि कमर में दर्द चल रहा है काफ़ी टाइम से और इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक्सरे या एमआरआई आजकल जांचें होती है जिनसे ये क्लियर कट पता लग जाता है कि कोई नसों पे दबाव तो नहीं है या कोई और बोन में समस्या तो नहीं है। तो उसमें अच्छा पानी लें, जो आरओ का पानी हो, दूध और कैल्शियम, इन चीज़ों का सेवन करें और थोड़ा सा कमर की एक्सरसाइज करें। ये समस्याएं 99% दूर हो जाती हैं कमर दर्द की, जो है कोई इतना बड़ा मतलब इशू नहीं रहता है इसमें।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने अभी तो बताया कि किस प्रकार से कमर दर्द की समस्या है वो हम दूर कर सकते हैं। एक और दर्द है वो आजकल हर घर में देखने को मिलता है कि सर दर्द। किस प्रकार से ये सर दर्द आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से हम सर दर्द के विभिन्न प्रकार है वो हम आगे डायग्नोस कर सकते हैं?
0: देखिए, सिर में दर्द जो है, अब हर किसी की लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ें, इतनी भागदौड़ और उसमें आ गई है आजकल कि इतने सारी चीज़ें बढ़ गई, पैसे की प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपर नहीं आना है, तो जब आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, जो जो 90% समस्या होती है वो दिमाग को रेस्ट नहीं मिलने की वजह से होती है। आप प्रॉपर स्लीप नहीं हुई, आपका नींद पूरी तरह नहीं ली, तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। सर में दर्द होने के बाद में फिर आपको नींद और नहीं आती है, तो फिर वो साइकिल ऐसे चलती रहती है। एक सर में दर्द जो कॉमन होता है वो होता है माइग्रेन की वजह से। अब माइग्रेन में क्या होता है कि एकदम तेज़ सर में दर्द होगा, किसी किसी की टेंडेंसी होती है, तेज़ सर में दर्द होगा, भूखे पेट रह गया तो सर में दर्द हो जाएगा, ट्रैवलिंग कर लेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा, या शोर शराबे में चले गए तो सर में दर्द हो जाएगा। माइग्रेन के लिए बेस्ट थेरेपी तो, हालांकि ट्रीटमेंट ये ड्रग से ही ठीक हो जाता है, लेकिन बेस्ट होती है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक करें, प्रॉपर ऑक्सीजन लें, सारा योगा करें, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करें, तो माइग्रेन ठीक हो जाता है। इसके अलावा सब, अगर फिर भी दर्द बना रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन का कराएं। उसमें अगर कोई ट्यूमर निकलता है या कोई और चीज़ निकलती है तो फिर उसका प्रॉपर न्यूरोसर्जन से आप उचित इलाज कराएं।
1: जी डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की बात आती है तो किस प्रकार से लाइफस्टाइल है वो रोगों के निदान में अति लाभदायक साबित हो सकता है?
0: देखिए, सारा हमारे पूरा शरीर ही लाइफस्टाइल पे टिका है। हमारी लाइफस्टाइल ही आधे से ज़्यादा, जो जितने भी बीमारियां हैं अभी, चाहे वो दिमाग की बीमारी हो, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो, या नसों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आप अगर ज़्यादा धूम्रपान करेंगे, अल्कोहल लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या नसों में पैदा होगी। आपका खाना पीना अगर व्यवहार ये पूरा उचित नहीं रहेगा तो भी उसमें नसों में समस्या हो जाएगी। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अब पहले लोग पैदल चला करते थे, आजकल पैदल चलना बंद है। अब जब पैदल ही नहीं चलोगे तो फिर आपकी मसल्स कैसे डेवलप होंगी, बोन्स कैसे डेवलप होंगी? पहले कुछ भी नहीं होता था कि रात तक आप मोबाइल, टीवी वगैरह में लगे रहते हैं, आदमी रात को अंधेरा हो जाता था, 8-9 बजे सब सो जाते थे, सुबह सूरज उगने तक वो इतनी नींद ले लेते थे कि दिन भर के लिए पूरा माइंड रिचार्ज हो जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि लाइफस्टाइल हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है।
1: डॉक्टर साहब, आप न्यूरो एक्सपर्ट है और आपने इस क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है आपका, तो दिमागी बुखार, दिमाग में गांठ होना और दिमाग की चोट, इस प्रकार के रोगों के लिए किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए और अगर हमें पता चले तो किस प्रकार से चिकित्सीय परामर्श है वो हमें लेना चाहिए?
0: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि दिमागी बुखार हो जाता है लेकिन फीवर चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता जब तक कि पेशेंट सीरियस ना हो जाए। सबसे पहले अगर कोई भी समस्या आती है इसकी, कि भाई सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है या सिर में चोट लग गई है, तो आप तुरंत से सीटी स्कैन कराएं सिर का। सिर का सीटी स्कैन या एमआरआई कराने से आपको क्लियर कट, ये क्लियर पता लग जाता है पहले चांस में कि जो बीमारी है वो बहुत हल्की है या गंभीर है। और अगर हल्की है या गंभीर है, जो भी है, तुरंत से उसका अगर पहले ही दिन इलाज चालू हो गया तो चाहे वो चोट हो, चाहे वो दिमागी बुखार हो, सारे ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, कहीं भी ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि हम लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं, हम लोग डायग्नोसिस पे नहीं पहुँचते, क्योंकि हम जांच नहीं

0: कराते हैं, और अगर हम जांच करा के डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचेंगे तो जब तक वो बीमारी इतनी फैल जाती है, जब तक कि हम उसको जांच कराते हैं तब कराते हैं, और उस हालत में उसका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब भी कभी अपने को सिम्टम आते हैं, हमें तुरंत से जांच करा के डायग्नोसिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। एक बार अगर डायग्नोसिस हो जाता है जल्दी से, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है।
1: एक और जो अहम रोग है वो काफी समस्या पैदा करता है और काफी जागरूकता की जरूरत है, वो है मिर्गी का आना, दौरों का आना। तो इसमें किस प्रकार से रोगी है वो ध्यान रखे और क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके लिए जरूरी हो?
0: देखिए, मिर्गी जो है एक आनुवंशिक रोग भी होता है, और बहुत सारे लोगों में मिर्गी की समस्याएं होती है, जिनमें जरूरी नहीं है कि भाई दिमाग में कोई चोट लगे या कोई इन्फेक्शन हो या कुछ हो। मिर्गी बिल्कुल नॉर्मल सा एक बिहेवियरल सिंड्रोम हो गया, जिसमें कि आपको अपनी मेडिसिन सिर्फ रेगुलर लेनी है, उसके अलावा उसके दिमाग में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। वो हम लोगों की तरह ही नॉर्मल तरीके से पूरी याददाश्त वाला पूरा मतलब हर तरीके से ठीक होता है। तो उसमें सिर्फ ये रहता है कि अपनी मेडिसिन रेगुलर लेते रहें, क्योंकि मिर्गी जब भी आती है, और सपोज आप कहीं पे किसी मशीन के पास काम कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, और तब अगर मिर्गी आ गई तो उसके बाद में एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए रेगुलर मेडिसिन लेते रहें। बाकी मिर्गी वाले रोगों को किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ रेगुलर मेडिसिन लेते रहें।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस प्रकार से मिर्गी के रोगी है वो अगर अपनी मेडिसिन लगातार लेते रहे समय समय पर, तो वो अपने आराम से काम है उस दिन डेली कार्य है
0: जी
1: वो कर सकते हैं।
0: जी
1: एक शब्द वो जो आजकल जो मेडिकल साइंस में बड़ा पॉपुलर हो रखा है वो है ब्रेन सर्जरी, और एक होता है न्यूरो इंटरवेंशन। तो इन दोनों में
0: जी
1: क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से हम एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेट करते हैं?
0: ये बेसिकली जैसे न्यूरोसर्जन होते हैं, ब्रेन की कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें ब्रेन को ओपन करके जो सिर की हड्डी हटा के और फिर उसके बाद में अंदर ब्रेन में जाया जाता है, तो उसको ब्रेन ओपन सर्जरी बोलते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें कि न्यूरो इंटरवेंशन जैसे हम करके आए हैं, मैं स्विट्जरलैंड से करके आया हूँ, तो उसमें क्या होता है कि पैर की नस में अपन तार डाल के, और वो तार जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट तक पहुँचते हैं, हम लोग ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। उसी तार की मदद से अपन ब्रेन में फंसे हुए क्लोट को निकाल देते हैं बिना सिर को खोले, ब्रेन के ट्यूमर की ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देते हैं बिना सिर ब्रेन को खोले, ब्रेन में जो गुब्बारे होते हैं उनमें छल्ले डाल देते हैं बिना ब्रेन को खोले। तो कहने का मतलब तीन चार सर्जरी ऐसी हैं ब्रेन की जो कि उस तार की मदद से ही बिना ब्रेन को खोले हो जाती है, जो आपकी पैर की नस से जो तार डाला जाता है। तो आप ये मान के चलिए ये बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है, जिसमें कि सिर का खोलना और सारी सर्जरी से बचा जाता है और वो काम हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल एक चीज और देखी जा रही है, कॉमन सा है, मैं इसको ये रोग का नाम नहीं दूंगा, कि कई बार ऐसा होता है कि हाथों में झंझनाहट सी होती है, ये किस कारण से होती है?
0: ये बेसिकली मैं बता रहा था ना कि लाइफ स्टाइल के कारण नसों की बीमारियां हो जाती है, किसी के पता लगता है कंपन शुरू हो जाते हैं, किसी के झंझनाहट हो जाती है। ये सब जो है एक वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं डाइट में, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, तो जो वाइटामिन्स मिनरल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी नसों के करंट के आगे पीछे जाने में, तो उन नसों की जो स्ट्रक्चर होती है उसको मेंटेन करने में। हमारा जो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो चाहे आप काजू बादाम खा लें या कुछ भी खा लें वो जाएगा ही नहीं वहाँ तक। दूसरा क्या होता है कि आपका खाना पीना तो कम पूरा रहता है, लेकिन आपने अगर तंबाकू का सेवन किया, आपने अल्कोहल सेवन किया, तो वो जल्दी से उसको नसों को डैमेज कर देता है। तीसरा कारण होता है कि अगर आपके बीपी और शुगर है तो उनका जल्दी से जल्दी इलाज करा के कंट्रोल रखें उनको। अगर आपने नसों को सही सलामत रखना है तो आपको बीपी शुगर को कंट्रोल रखना है, कोई शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करना, और एक्सरसाइज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपकी डाइट जो है जो रोटी सब्जी दाल और ये इतना पर्याप्त होती है कि इसमें सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये चीज़ें आप ध्यान रखें और अपना आराम से नसों को मजबूत कर लें।
1: डॉक्टर साहब, एक एजिंग का प्रोसेस होता है और हम भी जो अनुभव करते हैं कि उम्र के साथ साथ याददाश्त में कमी आती है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि याददाश्त है वो मेंटेन रहे, स्तर में वो इवन चाहने से तो ये होता है कि बढ़ भी जाए, लेकिन अगर बढ़ा ही नहीं तो कम से कम घटे नहीं। तो किस प्रकार से याददाश्त में कमी आती है और अगर इसको मेंटेन रखिए तो क्या क्या हमें प्रयास करने चाहिए?
0: देखिए, याददाश्त में कमी का हमें लगता है कि अगर यंग एज में किसी की याददाश्त में कमी आ रही है तो हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए कि कोई ना कोई रीज़न है, और अगर जैसे कोई 70 साल है, 80 साल है, उनकी अगर याददाश्त में कमी होती है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि ब्रेन को एट्रोफी होना है धीरे धीरे। अगर याददाश्त हमें

0: तेज करनी है, तो ऐसा कुछ भी कोई फॉर्मूला नहीं आता। याददाश्त के लिए क्या होता है कि आपकी ब्रेन है, अगर ब्रेन एक ही समय पे 10 10 काम कर रहा है, 10 जगह सोच रहा है, और आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जो चीज़ आपको याद रखनी थी, तो डेफिनेटली वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगी। आपको लगेगा कि मैं तो भूल जाता हूँ, वो दरअसल कंसंट्रेशन का सारा वो है। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी डाइट में जाते ही नहीं है। आपने देखा होगा आजकल आपको 40 30 45 साल के लड़के भी ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा याददाश्त और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, वरना पहले कहीं पे भी ऐसा वो नहीं था कि भाई। तो आपका खान पान अच्छा रहे, आपका अगर आपके पास कोई बीपी शुगर वगैरह है तो वो चेक कराएं, और दूसरा जितनी आप मैथमेटिक्स या ब्रेन की लर्निंग स्किल्स हैं उनको कंटिन्यू रखें। बच्चे क्या टीवी पे मोबाइल में ये सब चीज़ें देखते रहते हैं, इनकी बजाय अगर वो पजल सॉल्व करें, अगर रीजनिंग के वो करें, लॉजिकल जो वो हैं उनको करें, तो उनकी याददाश्त डेफिनेटली 100% हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस प्रकार से अपनी याददाश्त है वो लगातार अगर आप लंबे समय तक मेंटेन करना चाहते हैं, तो जो सिंपल सा तरीका है आप मैजिक जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें या पजल्स को सॉल्व करें, एक और जो मेडिकल टर्म है ब्रेन हेमरेज,
0: जी
1: इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए और किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्रेन हेमरेज तक की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
0: देखिए, ब्रेन हैमरेज तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्रेन हैमरेज होता है तभी पता लगता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रेन हैमरेज होता क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बीपी की बीमारी से होता है। ब्रेन हैमरेज का मतलब होता है सर में अपने ब्रेन में कोई भी वैसल नस होती है, खून की नस का फटना। वो नस क्यों फटती है? क्योंकि आपका बीपी बहुत ज़्यादा था, वो बीपी 200 250 पहुंच जाता है और वो फट जाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जब कोई नल अगर खुल जाता है तो इतना पानी बह जाता है, ऐसे ब्रेन में ब्लड बह जाता है। तो उसमें उस हालत में अगर आपने बीपी पे ध्यान दिया, हमारे यहाँ पे है ही नहीं सिस्टम चेकअप कराने का कि आप 40 साल की उम्र के बाद में बीपी रेगुलर चेक कराएं, शुगर चेक रेगुलर चेक कराएं, क्योंकि ये हमारे आनुवंशिक होती है, हमारे घरों में सारी चीज़ें चलती हैं, पड़े माँ बाप दादा दादी सब लोगों में चलती हैं। तो बीपी को कंट्रोल रखें, कभी ब्रेन हैमरेज नहीं होगा। शुगर को कंट्रोल रखें, कभी ब्रेन हैमरेज नहीं होगा। दूसरा जो कारण होता है ब्रेन हैमरेज का, वो होता है कि सिर की नसों में गुब्बारा बन जाता है, जिसको बोलते हैं एनुरिज्म। वो एनुरिज्म आनुवंशिक होते हैं ज़्यादातर, और स्मोकर्स में होते हैं। तो वो एनुरिज्म अगर है तो वो अगर पहले पकड़ में आ जाए आपने आपके, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जब तक नॉर्मल होते हैं तो कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन अगर वो फट भी जाता है, तो अगर फट के और मरीज थोड़ा ठीक ठाक हालत में होता है, तो उसमें जो मैंने आपको टेक्निक बताई है न्यूरो इंटरवेंशन, इसमें पैर की नस से डाल के और उसको एनुरिज्म को बंद कर देते हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसमें कहीं किसी तरह की वो नहीं रहती है। तो ब्रेन हैमरेज से बचने का तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उसके इलाज करवाने के। और बचने का तरीका यही है कि बीपी को अपने चेक कराएं, स्ट्रेस नहीं लें, प्रॉपर स्लीप रखें, अपने आप को रिलैक्सेशन रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने जो न्यूरॉन और स्पाइन रोग से संबंधित विभिन्न जानकारी है, महत्वपूर्ण यूजफुल जानकारी हमारे श्रोताओं तक साझा की है, और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी। कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोता साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही देना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा सोचो, यही सब पूरी जीवन की सफलता की कुंजी है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता साथी, आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल जी से, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी है वो न्यूरो और स्पाइन रोग संबंधित जो बीमारियां उन पर दी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता विभिन्न प्रकार के न्यूरो रोग और उसके निदान विषय पर डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल से अमित कुमार सैनी की बातचीत। कार्यक्रम था स्वास्थ्य आपका, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल से दिल तक।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम लेते हैं एक कमेंट्स जो हमारे पास आया है। ग्राम मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला का लिखती हैं, बरसाती बूंदें धरती को नया जीवन दे जाती हैं, भीगी भीगी फिजाओं में मन खुशी से झूम उठता है, मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू को दिल को सुकून देती है, हरियाली की चादर ओढ़कर प्रकृति और भी सुंदर लगती है, सुहानी बारिश हमें प्रकृति के अनमोल उपहार का एहसास कराती है। ये कमेंट हमारे पास आया है, आप लिखते हैं।

बनवारीलाल कुशवाहा है, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत रामानंद और उनके साथी। ये लिखते हैं गर्मियों की छुट्टियां और बचपन की यादें, जीवन के वे सबसे खूबसूरत और बेफिक्र पल होते हैं जो हर किसी के दिल के बेहद करीब रहते हैं। होमवर्क की चिंता से दूर, ननिहाल के लंबे सफ़र, दोपहर में दोस्तों के साथ आम के बागों की सैर और दादा दादी के किस्सों से जुड़े अनमोल क्षण का आज भी मन को सुकून देते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भले ही कितने आगे बढ़ गए हों, लेकिन वे दिन और भी बचपन की मासूमियत हमारे जीवन का सबसे खुशनुमा हिस्सा है। चाहे बचपन की वे धूप भरी दोपहरी हों या फलों से भरपूर गर्मियों के दिन, हर पल का अपना एक अलग मज़ा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच इन छुट्टियों का असली आनंद भी कहीं पीछे छूट जाता है। आज की व्यस्त जिंदगी में गर्मियों की छुट्टी और बचपन की हकीकत केवल यादों और कहानियों तक सिमट कर रह गई है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
8: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है दिल से दिल तक, जो आधारित है फेसबुक कमेंट्स पर। ये कमेंट हमारे पास आया है, आप चंडीगढ़ से लिखते हैं, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा लिखते हैं, समझदार व्यक्ति जवाब देते हुए पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिताने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है, और सबसे ज्यादा नफरतों का सामना भी सच बोलने वालों और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। इसलिए जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। सच्चा रिश्ता अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए फिर भी कभी शब्द नहीं बदलते। ये कमेंट हमारे पास आया है, आप हैं, नाम लिखा है आपने, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी और आपका पूरा गोस्वामी परिवार। आप लिखते हैं कि इंसानियत पर कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं, धर्म, जात, दौलत सब बाद में, पहले इंसान बनो। इंसानियत की पहचान यह है कि मंदिर मस्जिद में झुकाकर सर तो ठीक, पर किसी भूखे को देखकर ना झुके तो बेकार। भगवान मूर्तियों में नहीं, भूखे के आंसू में दिखता है। छोटा काम बड़ा सर, एक गिलास पानी पिला दो प्यासे को, एक कंधा दे दो, कंधा दे दो रोते को, एक मुस्कान दे दो उदास को, बस इतनी सी इंसानियत है। बड़े काम किस्मत वाले करते हैं, छोटे काम इंसान। ये लिखते हैं, हादसे में लोग पहले वीडियो बनाते हैं मदद बाद में, तभी तो इंसानियत ICU में पड़ी है। और राजस्थानी कहावत के बारे में लिखते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है, पराई पीर जो ना जाने सो काफिर सामान, दूसरे का दर्द जो ना समझे वो इंसान कहलाने लायक नहीं। और धर्म से ऊपर लिखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खून का रंग तो सबका लाल है भाई, अस्पताल में खून चढ़ाते वक्त कोई जात नहीं पूछता, फिर जिंदगी में क्यों। ये लिखते हैं, मरने के बाद लोग क्या कहेंगे, चार कंधे मिले या नहीं, पर जरूरी उससे जरूरी है जीते जी कितने जितने कंधों का सहारा बने। अगर मदद नहीं कर सकते तो तकलीफ तो मत दो, अगर दुआ नहीं दे सकते तो बददुआ मत दो, बस इतना कर लो इंसानियत जिंदा रहे। आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कमेंट हमारे पास आया है, फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में, कभी उसका दिल रखा इसी कसम कसम में, भूल गए दिल खुद का दिल कहाँ रखा। आप हैं जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और आपका पूरा परिवार।

श्रोताओं, अगला कमेंट हमारे पास आया है। आप हैं गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़ से, वेद मिड्डा और अलका मिड्डा का। लिखते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई है कि खुश रहना सीख लेंगे तो बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। जब हमारे भीतर परिवर्तन होता है तभी आसपास की चीज़ें भी बदल जाती हैं, नज़रिया ही बदल जाता है। प्रसन्न रहना और छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां ढूंढना शुरू करें, यकीन जाने आपका पूरा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। ये कमेंट हमारे पास आया है जी के परमार, गांधीनगर गुजरात से। लिखते हैं, कभी कभी सब कुछ पास होकर भी इंसान अकेला महसूस करता है, क्योंकि सुकून धन से नहीं।

बल्कि किसी के अपने मन और मन की शांति से आता है। ये कमेंट हमें मिला है, आप हैं सईराम नगर पीथीसर चूरू से, हरि सिंह नायक, चिक्की नव्या, हर्षित विवान, लक्षिता और आपका पूरा नायक परिवार। कहते हैं आपका जीवन जो भी है, जैसा भी है, आप जहां भी हैं, जिसके साथ भी हैं, विश्वास रखिए ईश्वर ने आपके लिए जो भी तय किया है वो ही श्रेष्ठ है। कभी कभी आपको गलत होगा, लगता होगा कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वो ही आपके लिए सही है। इसलिए प्रभु के हर आशीर्वाद को सहज रूप से स्वीकार कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए।

अगला कमेंट हमें मिला है, आप हैं सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड, आप लिखते हैं, नमस्कार के साथ आप सबके लिए आज का दिन खूबसूरत मंगलमय हो। हर ठोकर इंसान को गिरने की नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधारने, संभालने और सीखने के लिए भी लगती हैं। केवल धागा लंबा होने से कोई पतंग आसमान तक नहीं पहुंचती, पतंग तो आसमान तक पहुंचाने के लिए उड़ाने का तरीका आना जरूरी होता है। इसलिए मंजिल तक पहुंचाना तो ठोकर भी लग सकती है, लेकिन ठोकरों से संभल कर और सीख कर ही आगे बढ़ा जाता है। ये कमेंट हमें मिला है, आप है रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, लिखते हैं, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है।

अगला कमेंट हमारे पास आया है, आप लिखते हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। आपने सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह है। लिखते हैं जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम जो फिर नहीं आते, और जब भी आते हैं तो आंखों में आंसुओं का सैलाब लाते हैं, और यदि वे चले ही जाते हैं तो दिल को तोड़ देते हैं, और भी तोड़कर इस कदर चले जाएं कि जैसे कि हमारी सांसें चली गई हों। इसलिए इन्हें सदैव संभाल कर रखना चाहिए। ये कमेंट हमें मिला है बहरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। लिखते हैं प्रकृति का दस्तूर है देना, मनुष्य और जीव जंतु के भरण पोषण के लिए अन्न जल और आवास हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, अतः हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी धरती को सजाने संवारने के लिए वसुंधरा को स्वच्छ रखें, इसको प्रदूषित होने से बचाएं और इस बारिश के मौसम में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। ये कमेंट हमारे पास आया है, आप हैं गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जागड़ा राजबाला कार्तिक व विदांश। लिखते हैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने से बेहतर है कि आप अपनी खुद की क्षमता पर विश्वास करें। आपकी सबसे बड़ी जीत खुद से हार न मानने में ही है।

इस कार्यक्रम के लिए अंतिम कमेंट हमारे पास आया, छोटा सा छोटी सी बात लिखी आपने, जो सीखना नहीं छोड़ता वह हमेशा आगे बढ़ता है। आप हैं राजेंद्र प्रजापत। कमेंट तो हमारे पास और भी आए हैं, मगर सभी जो जितने आगे कमेंट हैं उनमें सभी में फरमाइशी गीतों के लिए लिखा है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये फरमाइशी कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बात लिखें और गीत हम आपको अपने हिसाब से सुनाते रहेंगे।

श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में अपने कमेंट भेजकर शामिल हो सकते हैं। कमेंट में अपनी बात रखें और सुने आप अपने नाम और अपनी जगह का नाम।

अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल से दिल तक। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।

नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता

0: हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा ली है, लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ, फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
1: हाँ, तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज़्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता।
0: जी
1: एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हुआ तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से भी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस।
0: जी
1: अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
0: जी तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है, और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है। इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो, तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा के गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
0: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। अगर ये गाना
1: बिल्कुल
0: आप कहें तो हम सुनवाएं,
1: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं।

0: कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन्स होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं।
1: जी,
0: तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना,
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना एक मुझे बहुत पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, हमारे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन MRI, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की भावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम, जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के

0: अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है, कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिग्रेस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोलते हैं हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है, ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी,
0: और काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी।
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे

0: जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है वो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मेनोम pH प्रोब बोलते हैं जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
0: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियाँ, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन।
0: जी
1: आई
0: जी
1: थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड, एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज़ अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये
1: हाँ,
0: क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सर दर्द हो गया है और
0: हाँ
1: एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है,
0: जी
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि

0: हेडेक होती है, पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है। तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
1: जी, जी.
0: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
0: कुछ
1: कहा
0: तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। हाँ। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, हाँ, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो,
0: बिल्कुल।
1: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है तो? हाँ, ये
0: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज। धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है, समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है, बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। This is a treatable cause of liver injury, hepatitis B. बाकी और भी viruses होते हैं, जैसे hepatitis A होता है, hepatitis E होता है। ये basically rainy seasons में हमको ज्यादा दिखता है, जब water contamination होता है, fecal contamination बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये virus होता है, liver पे injury करता है, पर आके चला जाता है। hepatitis E ज्यादा हम pregnancy में देखते हैं, hepatitis A can be seen any time. एक और तरह का virus होता है hepatitis C, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर

0: नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो. ये कॉमन इंजरी है लिवर की. तो फैटी लिवर हमने बोला. अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है. अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है.
1: जी, जी,
0: ये कॉमन है. वायरसेस कॉमन है. फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं. लास्ट चीज में गॉल ब्लैडर स्टोन. गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है. उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है. अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है. तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं. गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस.
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है. कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड के तला हुआ खाके. दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है. इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है. एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं.
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं. गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती. लाइफ नॉर्मल कटते रहती है.
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई. और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है. अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है. अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं. तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले. अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ. एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है. तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी. दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव. हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत.
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या तो, कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड. बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में. कुक्ड फूड खाओ. राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए. पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड.
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता. आईबीएस इज जस्ट अ सेंसिटिव थिंग. अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है. इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग. इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये.
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को. बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: चले चलो, ये गाना सुना है. चले चलो,
1: चले चलो लगान का.
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो.

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो। बार सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कुलदार ये तेल अच्छा है, ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और
1: स्टेरॉइड भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजिली मिल जाती है उसके पीछे बहुत ईयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होंगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे मांगीलाल पुजारी एंड पार्टी। दिन में 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत 1:05 पर। चर्चा होगी शादी के बाद मायका, माँ से जुड़ाव या आरामगाह, सुधरने की कोशिश रखती है मायने, अपने समय का 24 घंटे का नियम बनाएं, जानकारी दी जाएगी। पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। दिन में 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने दिन में 2:30 पर।

आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7 बजे। चर्चा होगी मौसम अनुकूल खेती के फायदे, ग्वार की उन्नत खेती कैसे करें। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत, लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए साजन फिल्म का गीत, गायिका है अलका याग्निक, गीत रचना समीर की है और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

मोहम्मद रफी और साथियों को सुनिए, फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत रचना शंकर जयकिशन की है।

सीआईडी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मोहम्मद रफी और गीता दत्त की। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम के अगले पायदान पर सुनिए सागर फिल्म का दो गाना। युगल आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन तैयार की है आरडी वर्मन ने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

दिल है कि मानता नहीं, फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में

0: जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह

0: परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी

0: सीखो शीश झुकाना।
1: सीखो शीश झुकाना।
0: सीख हवा के झोंकों से लो।
1: सीख हवा के झोंकों से लो।
0: कोमल भाव बहाना।
1: कोमल भाव बहाना।
0: दूध तथा पानी से सीखो।
1: दूध तथा पानी से सीखो।
0: मिलना और मिलाना।
1: मिलना और मिलाना।
0: सूरज की किरणों से सीखो।
1: सूरज की किरणों से सीखो।
0: सूरज की किरणों से सीखो।
1: सूरज की किरणों से सीखो।
0: जगना और जगाना।
1: जगना और जगाना।
0: लता और पेड़ों से सीखो।
1: लता और पेड़ों से सीखो।
0: सबको गले लगाना।
1: सबको गले लगाना।
0: दीपक से सीखो जितना।
1: दीपक से सीखो जितना।
0: हो सके अंधेरा हरना।
1: हो सके अंधेरा हरना।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: सच्ची सेवा करना।
1: सच्ची सेवा करना।
0: जलधारा से सीखो आगे।
1: जलधारा से सीखो आगे।
0: जलधारा से सीखो आगे।
1: जलधारा से सीखो आगे।
0: जीवन पथ में बढ़ना।
1: जीवन पथ में बढ़ना।
0: और धुएं से सीखो हरदम।
1: और धुएं से सीखो हरदम।
0: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
2: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे न होंगे
2: हार। बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: काम काम काम, सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काम काम काम।
0: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो यह बात हाँ, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
5: क्या
6: क्या
5: क्या?
4: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
0: नीचा
4: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना का।

0: Abandonó.
1: ¿Yo a qué amarás?
2: ¡Dame la gaque!
3: ¡Ay, ya!
2: ¡Dame la gaque!
3: ¡Ay, ya!
4: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम। चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
1: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
4: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
4: का का का।
5: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पानी पपीहा ना पिए दूजा पानी, हाँ हाँ पपीहा ना पिए दूजा पानी, पपीहा ना पिए दूजा
1: पानी। इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँ गाँ गाँ, कुत्ते देख नहीं रहे शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँ गाँ शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से

0: खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: इसकी यही सजा हो, यही दंड हो।
2: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
3: गाँव गाँव, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँव
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
5: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
3: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
3: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
3: काँव काँव, हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहे के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: आओ, आओ, आओ, आओ। कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी।

0: क्या पता?
1: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
0: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
0: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मांगीलाल पुजारी एंड पार्टी की गाई लोक रचनाएं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के सुर में अभी आप सुन रहे थे मांगीलाल पुजारी एंड पार्टी को। अब आज का लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के सुर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
1: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर तीन पाइपलाइन से पानी जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सौगात है राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राइजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम वीबीजी रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम वीबीजी रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1,200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक काम

कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1 करोड़ 3 लाख नए जॉब

0: अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ-साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल एसओजी ने फर्जी एफएमएजी सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम कार्यक्रम महिला जगत लेकर हम आ चुके हैं और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूँ आपकी सखी संजू सोढ़ा। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, हम सभी को पता है कि हम में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। हमें बहुत सी ऐसी बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जिनका हमें लगता है कि इन गलतियों को अगर हम चाहते तो पहले से इन गलतियों को हम सुधार सकते थे। लेकिन फिर भी जब भी हमें ऐसा लगे कि हमने कोई गलती की है और हम उसे सुधार सकते हैं, तो हमें बहुत जल्दी वो कोशिश कर लेनी चाहिए जिससे कि हमारी गलतियां जो है सुधर सके। क्योंकि खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें, यानी कि खुद को सुधारने के लिए हमें कोशिश जो है हमेशा जारी रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम में कभी ऐसा नहीं होता कि हम सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जो है वो बन ही जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बड़े से बड़े जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे भी कई बार जो है बहुत सी गलतियां हो जाती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि अब हमसे गलती हुई है तो हम जो सीखना है या अपने आप को सुधारना है, इन आदतों, गंदी आदतों को छोड़ना है, हम जारी नहीं रखेंगे। क्योंकि जीवन भर सुधरना जो है, या कहें कि आदतें, गंदी आदतें छोड़ना जो है, वो जीवन भर चलता रहता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अपनी कोशिशें जो है निरंतर रखें। अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई में जो है एक अच्छे इंसान बने, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हमें अपनाना होगा। गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उस गलती से क्या सीखते हैं, क्या हम उससे सबक लेते हैं, और लगातार उस गलती को ना दोहराने के लिए हम जो सकारात्मक बदलाव लाते हैं उनके लिए हम क्या कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे आपसे गलतियां 1000 बार हों, लेकिन उन गलतियों को आप सुधारना जो है कभी ना छोड़ें। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए आप बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटी शुरुआत करें। एक ही दिन में हम सोचते हैं कि हम अपनी जो आदत है उसको एक ही दिन में बदल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि किसी को मान लो कुछ खाने की आदत है, या फिर कुछ और कुछ बोलने की, करने की आदत है, तो ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लगे कि नहीं, कल से मैं ये सब बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें वो शुरुआत जो है एक छोटे स्तर से करनी होगी, और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे धीरे धीरे जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो आदतें सुधरनी चालू हो जाती है, तो एक दिन ऐसा आता है जो आदत हमारी बुरी होती है या जो हमें अच्छी नहीं लगती है वो पूर्णता से बदल जाती है, और वो हमारी आदत जो है सुधर जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमें गलतियों को स्वीकारना चाहिए। कभी भी अपने आप को हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने ऐसा किया। गलती करके भी हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये एहसास बिल्कुल नहीं होता है कि उन्होंने गलती की है। वो ये बिल्कुल नहीं स्वीकारते हैं कि उन्होंने ये गलती की है। लेकिन गलती स्वीकारना भी एक बहुत बड़ी अच्छी आदत है, कि जब हमसे गलतियां हो जाती है, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने की इच्छा रखना ही जो है सुधार की दिशा का पहला कदम होता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आपसे गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और गलतियों को स्वीकारने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो चेंज हो जाएं या आप में जो है सुधार आने शुरू हो जाएं, तो उसके लिए आप ऐसे करें कि अपने आसपास जितने सकारात्मक लोग रहते हैं उनके साथ रहें। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से आपको प्रेरणा मिलती है और आपका मनोबल बढ़ता है कि आप भी जो उनमें अच्छी आदतें हैं उनको अपनाएं, और अपने आप में जो आपको गलतियां दिखती है या सुधार जो आप अपने आप में लाना चाहते हैं, वो उन लोगों से आप सीखते हैं कि किस तरह से हम आपको अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि सामने वाले जो सकारात्मक लोग हैं उनमें भी कुछ जो है गलतियां नहीं होती होंगी, उनमें भी होती होंगी, लेकिन कोशिश आप ये करें कि आप उनकी अच्छी आदतों को अपनाएं और अपनी गंदी आदतों को आप जो है सुधारने की कोशिश करें, खुद को माफ भी करें। कई बार हमसे ऐसा नहीं होता कि हम जानबूझ कर ही जो है बहुत सी गलतियां करते हैं, जाने अनजाने भी हमसे जो है बहुत बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए खुद को माफ करने भी जो है आपको आना चाहिए। अगर किसी दिन सुधार की प्रक्रिया में आपको असफलता मिलती है कि आपने चाह कर भी जो है आप अपनी गलती को नहीं सुधार सके, तो आप उसके लिए खुद को कोसने की बजाय एक नई शुरुआत करें और कोशिश ये करें कि आपकी गलती जो है, चाहे वो जाने अनजाने में हो, चाहे चाहे आपने जानबूझकर की हो, कभी भी आपसे ना हो। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपने आप में सुधार लाने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस सुधार को एक जगह पर लाकर ना छोड़ें, उसे निरंतर प्रयास करते रहें, और आप देखेंगे कि खुद ब खुद के बहुत दिनों तक जब आप किसी एक चीज का प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है।

चाहे वो हम देख लें कि चाहे वो कोई भी काम हो, वो कहते हैं ना रटत रटत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। तो वही बात है कि जब जड़ पत्थर बुद्धि जो होती है, जब वो भी रटते रटते जो है अपने आप को ज्ञानी बना सकता है, तो हम तो एक इंसान है कि जब हम चाहते हैं कि हम किसी प्रक्रिया को जारी रखते हैं, अगर अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ला नहीं सकते, लेकिन कोशिश हमारी निरंतर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक समय पर आकर रुक जाए।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: सोचा ना था जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब मेरा मन अपने घोंसले में जाने को तरस जाएगा। हम बेटियों के लिए घोंसला ही तो है उनका मायका, जहां से हम सब कुछ पीछे छोड़कर तिनकों रूपी यादों को दिल में बसाकर अपने एक नए आशियाने की तरफ निकल पड़ते हैं और हर बार एक चिड़िया की तरह अपने मायके का चक्कर लगा के आते हैं। हम नहीं, इनके साथ तो क्या हुआ, बाकी सब तो ठीक है, बस ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमारी कमी जो है इन्हें कभी नहीं खलेगी, क्योंकि इनके साथ और भी बहुत हैं। लेकिन इस बार तो अब आऊंगी, कब आऊंगी, इस इंतजार में कितने मौसम जो है बीत जाते हैं और मेरी आंखों के नटखट आंसू हर बार मेरे उदास मन से जीत जाते हैं। कब आओगी बिटिया रानी, शायद इस आवाज की खनक हर बेटी के दिल में उस दिन से जुड़ी होती है जिस दिन बाबुल की लाडो पीहर का आंगन छोड़ के आती है। बिटिया के दिल की हर धड़कन के साथ बस एक ही दुआ आती है, बाबुल का घर आबाद रहे, उस घर में हमारी याद रहे। जी बिल्कुल, हम महिलाओं के लिए अपने मायके को छोड़कर आना और एक नए घर को जो है अपनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम सभी चाहते हैं कि जब भी छुट्टियां हो, जब भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिले, हम अपने मायके होकर आ जाएं। चाहे हम 2 दिन के लिए जाएं, चाहे हम 2 घंटे के लिए ही जाएं, लेकिन हम एक बार वहां जाकर आएं तो सही, ताकि हम अपनी पुरानी यादों को जो है वापस जी सकें। हम महिलाओं के लिए शादी का बाद जो मायका होता है वो सिर्फ आराम करने की एक जगह नहीं होती, बल्कि एक महिला के लिए अपने माँ और परिवार से गहरे भावनात्मक जुड़ाव, सुकून और अपनेपन का स्थान होता है। एक ऐसी सुरक्षित कोना होता है जहाँ हम अपने जड़ों से जुड़ी रहती हैं। भले ही हम ऐसे ना हो कि मायके हम रोज आए या हम जो है जल्दी जल्दी आते रहें, भले ही हम अपने मायके में 1 साल बाद आए, 1 दिन बाद आए या 1 दशक बाद आए, लेकिन जब भी हम आते हैं हम देखते हैं कि हमें वहाँ पहुँचते ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि हम शायद उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमें लगता है कि वाकई में आज जो है हमें सच्ची खुशी मिली है, आज जो है हम अपनी पुरानी यादों को याद करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा एक भावनात्मक संबल जो है वहाँ से जुड़ा रहता है। शादी के बाद जब हम एक नए माहौल में जाते हैं, उन जिम्मेदारियों को बीत जाते हैं, तो मायका एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई भी महिला बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकती है। अपनी माँ का साथ जो होता है उसे किसी भी मानसिक तनाव से उबरने की शक्ति देता है। जब माँ उसे ये कहती है नहीं सब कुछ ठीक होगा, नहीं ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा सब्र रखो सब ठीक होगा, ये इतनी बात

हम अपनी माँ से सुन लेते हैं, अपनी माँ के पास बैठकर, भले ही हम फोन पर अपनी माँ से हजारों बातें करते हों, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आजकल जो डिजिटल दुनिया है, हम देखते हैं कि हम वीडियो कॉल भी करते हैं, हम जो है सारे दिन बात भी, हम जो है अपनी हर बात जो है अपनी माँ बाप को, अपने भाई बहनों को बता सकते हैं, लेकिन एक जो भावनात्मक हमें संबल मिलता है जब हम उनसे स्पर्श होते हैं, हमारी माँ जो होती है हमारे सर पर जब हाथ फेरती है, जब अपना हाथ अपने हाथों में लेकर हम जब उससे कोई बात कहते हैं, तो हमें अंतर मन को एक खुशी मिलती है कि आज हमारा बोझ जो है कुछ हल्का हो गया, आज हमारा दुख जो है या जिन परेशानियों से हम गुजर रहे थे उनसे जो है हमें थोड़ी राहत मिल गई। ऐसा नहीं होता कि हमें ससुराल में खुशी नहीं मिलती या ससुराल में हमें समझने वाला कोई नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ससुराल में हर चीज़ जो है टाइम पर मिलती है, हमें बहुत सी खुशियाँ जो है हमारी ससुराल से जुड़ी रहती है, लेकिन माँ से जो एक हमारा लगाव होता है वो एक अलग ही लगाव होता है। उनसे दुख सुख की जब हम बातें करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी बचपन की यादें होती है, अपनापन जो होता है हमारा मायके से जुड़ा रहता है, मायके में बिताया गया समय और माँ का लाड़ प्यार एक महिला को मानसिक रूप से तरोताजा करता है, और ये केवल शारीरिक आराम नहीं होता बल्कि एक मानसिक शांति और खुशी का एक माध्यम होता है जब हम अपने मायके में जाते हैं। नई भूमिका में ढलने में भी हमारी मदद करता है कि मायके में बिताया गया समय जो होता है वो किसी भी महिला को अपने ससुराल की नई जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने की एनर्जी देता है। बात करते हैं हम पारंपरिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की, तो जो त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, पारिवारिक समारोह में माँ के साथ समय बिताना महिला को अपनी एक संस्कृति से जोड़े रखता है। इसलिए हमारा मायका जो होता है वो सिर्फ एक आरामगाह नहीं होता, जहाँ हम सिर्फ एक आराम करने नहीं आते। बहुत बार हम जब जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ये तो सिर्फ आराम करने आए हैं या सिर्फ ये आराम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उस मायके को आप एक आरामगाह ना समझे, वो हमारा एक वहां से जुड़ाव है, वहां से हमारा एक अपनापन है जिसे हम जुड़े रहना चाहते हैं, जिस जहां जाकर हम जो है अपने बचपन को याद करते हैं, अपने बचपन की उन गलियों में से जब हम गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हम आज भी उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं एक बच्ची की तरह। तो यही बात है कि जब हम माँ के पास जाते हैं तो वो हमारा जो होता है वो माँ से प्यार होता है, माँ से हमारा जुड़ाव होता है, ना कि हमारा आरामगाह होता है। अगर कोई भी महिला ये सोचकर जाती है कि नहीं बस मुझे पीहर जाना है और कुछ दिन जो है मुझे रेस्ट कर आना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी महिला ना होगी जिनका हम ये माने कि एक जुड़ाव ना होता हो और सिर्फ वो सिर्फ वहां पर एक आराम करने के बहाने से जाती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा अपनी माँ से जो है जुड़ाव होता है, वहां के उस घर से जुड़ाव होता है, उन गलियों से जुड़ाव होता है, और जब हम वहां जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ आप ये समझ कर कि औरत के मायके जाने की जब एक उम्र होती है तो हम खुद देखते हैं कि जब वो उम्र गुजर जाती है तब औरत खुद ही जो है अपने मायके जाना बंद कर देती है। इसलिए हम ये ना सोचे कि क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे माता पिता नहीं होते हैं मायके में तो जाते ही हमें सबसे पहले हमारी माँ की याद आती है कि मम्मी कहाँ है या माँ कहाँ है, तो हमें लगता है कि हमारा मायका जो होता है वो हमारी माँ से सबसे बड़ा जुड़ाव होता है। माता पिता से हमारा जुड़ाव जो होता है वो हमारा कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए मायका जो होता है वो सिर्फ हमारा आरामगाह नहीं है, वो हमारा भावनात्मक और शारीरिक हमारी मानसिक शांति के लिए जो होता है वो हम वहाँ पर रहना चाहते हैं और उन यादों को फिर से एक तरोताजा करना चाहते हैं, ताकि फिर एक भरपूर एनर्जी के साथ हम ससुराल जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अक्सर हम लोगों से ये सुनते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता या मेरे लिए टाइम जो है कम पड़ जाता है, काश हमें और ज़्यादा टाइम मिलता या और थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो हम ये कर लेते, ऐसा हो जाता। लेकिन हम सबको पता है कि हम सभी के लिए, चाहे वो सफल व्यक्तित्व हो चाहे असफल, सभी को एक 24 घंटे का टाइम ही मिलता है। लेकिन अगर आप अपना कार्य समय पर नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि टाइम मेरे पास थोड़ा और होता। लेकिन जो अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, जो अपने 24 घंटों की एक दिनचर्या बना के चलते हैं, उनके लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। और वो अपना हर काम जो है वो टाइम से कर लेते हैं और हर काम जो है उनका लगता है कि समय से हो गया और पूरा हो गया। अगर हम भी कुछ नियमों का पालन करें, अगर हमें लगता है कि हम अपना कार्य जो है वो समय से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जो है अपने जो टाइम मैनेजमेंट को जो है ऐसे एक दिनचर्या बनानी होगी या ऐसा एक शेड्यूल बनाना होगा जिसमें हमें लगे कि हम जो है इसके अकॉर्डिंग अपना काम करें, तो हमारा काम जो है वो सही समय पर होगा, व्यवस्थित तरीके से होगा और हमें ये शिकायत नहीं होगी कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। तो हमें जो है 8+8+8 यानी कि 3 8 के हिसाब से अपने आप को बांटना चाहिए, जिसमें हम 8 घंटे जो है नींद को पूरा करें, 8 घंटे में अपने जरूरी कार्यों को निपटाएं और 8 घंटे अपने आप को दूं, यानी कि अपने व्यक्तिगत कामों को हम दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप जो है समय से अपने काम को पूरा कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि नियमों का पालन करें। एक बार कोई भी कार्य शुरू करने के बाद उसे पूर्ण करके ही छोड़ें। ऐसा ना हो कि आप जो है आधे अधूरे कामों को जो है छोड़ दें और फिर आपको ऐसा लगे कि ये काम भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम भी पूरा नहीं हुआ और तीसरा काम भी जो है हमारा अधूरा रह गया। अगर आप ऐसा छोड़ते हैं तो आपके कोई भी काम जो है समय पर नहीं होंगे और ना ही पूर्ण होंगे। तो समय तय कर लें और मार्जिन करके चलें कि कभी कार्य में परेशानी आने पर कितना और अधिक समय जो है आपको लग सकता है। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है आप किसी दूसरे कार्य के बारे में विचार ना करें। अगर आपका ध्यान जो है दो कामों में बढ़ जाता है तो आपका एक काम भी जो है अच्छे से नहीं होगा। तो इस तरह अगर आप अपने नियमों का पालन करेंगे, प्रतिबद्धता से चलेंगे, तो आपके सारे काम जो है वो सही समय पर होंगे। सबसे पहले आपको करना होगा कि आप कामों की सूची तैयार कर लें। जी हाँ, काम पर बैठने से पहले आपको कार्यों की सूची जो है पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए और कैलेंडर और समय के अकॉर्डिंग जो है उसे तय करें और उस अनुसार ही जो है अपने सारे कार्यों की प्लानिंग करें। आपको ऐसा करने से आपका समय बचेगा और आपके काम जो है वो जल्दी पूरे होंगे। दरअसल ऐसा होता है कि कार्यों की सूची बनाने में हमारा दिमाग जो है वो तेजी से कार्य करने लगता है और सूची बनाने के साथ ही हम प्राथमिकता भी तय कर लेते हैं कि कौन सा कार्य जो है आपका महत्वपूर्ण है, कौन सा आपका कार्य जो है उसे आप बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं, इस तरीके से उनकी सूची बना लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कौन से कम जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्यों को हमें रखना चाहिए कि कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचा तो कुछ बड़ा काम कर पाओगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब हम बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पूरा करते हैं तो हम अपने तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते। ऐसा नहीं होता कि जब हमने कोई बड़ा कार्य करना शुरू किया है तो हम जो है सीधा ही उसे बड़ा करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई भी बड़ा काम हो चाहे कोई छोटा काम हो, जब हम उसे जो है छोटे स्तर से शुरू करेंगे तो ही हमारा बड़े से बड़ा काम जो है समय पर हो पाएगा। इसलिए तनाव और दबाव दोनों का हमारा स्तर जो है कम हो जाता है जब हम किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं। और हमें खुद को ऐसे लगता है कि जब हमारे वो छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होते चले जाते हैं तो हमें एक मनोबल भी बढ़ता जाता है कि हमने इस स्टेज को पार कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेज है। इस स्टेज

को भी हम पार कर लेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट काम करेंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करते हुए अपने बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और जल्दी ही हम सही गलत का चुनाव भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा बड़ा लक्ष्य तय करने में हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम जो है अपनी रणनीति को चेंज कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उनको जो है बहुत जल्दी उनका समापन कर सकते हैं। अगले दिन क्या करना है ये आपको पहले ही सोच लेना चाहिए कि कोशिश करें कि अगले दिन आपको क्या करना है वो आप पहले से ही रात को सोच लें या उसकी सूची तैयार कर लें या अपने दिमाग में उसको पहले से फिक्स कर लें कि अपने प्राथमिक कार्यों से आपको कौन से कार्यों को पहले करना है और कौन से कार्यों को बाद करना है, ताकि आप जब सुबह उठते हैं तो अपने कार्यों से निवृत्त होने के बाद आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मैं जो है कहाँ से शुरू करूँ कैसे शुरू करूँ। मन को स्थिर करना होगा। बार बार जो है हमें आदत होती है कि हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, मोबाइल की लत जो हमें होती है, स्क्रीन की जो हमें लत होती है, उनसे जो है आपको थोड़ा दूर रहना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा। बार बार जब हम अपने मोबाइल को चेक करते रहते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है बार बार जो है हम अपने मोबाइल में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं या जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं उन्हें देखते रहते हैं, ईमेल्स चेक करते रहते हैं, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। साथ ही साथ ये हमारे कार्यों को करने में हमारा समय जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ये हमारे समय की बर्बादी भी करता है। तो कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के लिए आपको जो है इन चीजों से थोड़ा दूर रहना होगा। शायद इसीलिए आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये 24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ गए, क्योंकि आप उन 24 घंटों की प्लानिंग जो है पहले से नहीं करते हैं, तय नहीं करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप अपनी दिनचर्या का बारे में सोचें, तो आप अपनी दिनचर्या के 24 घंटों को पहले से ही तय कर लें कि इन 24 घंटों में आपको क्या करना है, तो आप देखते चले जाएंगे कि किस तरह से आप जो है अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं।

और अब हम देते हैं आपको जानकारी प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों और विभागों की विभिन्न योजनाओं और पहलों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिले और वो देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सके। कार्यक्रम के उद्देश्य जो हैं वो हैं शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। साथ ही बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय की योजनाओं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए है। हालांकि अन्य सभी सहभागी गृह मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के पहलों और परिव्यय के लक्ष्यों का 15% जहां तक संभव हो अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है। तो आज हम इस कार्यक्रम में जिस योजना की जानकारी आपको दे रहे हैं वो है ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए आवास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक व आर्थिक लक्ष्यों का निश्चित प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो ये थी आज की योजना प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम।

महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले मीडिया न्यूज, फिर 2:15 पर दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप

0: मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
6: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूंका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम

माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.0।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जोश।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: बड़े दिल वाले, सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

जुदाई फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

जहां आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शालिनी। तो युवाणी सुनने वाले तमाम श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार।

चलते हैं, नई चुनौतियां सामने आती है और नए अवसर भी हमारा इंतजार करते हैं। लेकिन इस सफर की सबसे खास बात यह है कि इसका अगला पड़ाव यानी कि हमारा कल आज हमारे लिए गए फैसलों पर डिपेंड करता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल देते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है जो उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाता है? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत होती है? उनके पास होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर गोल, पॉजिटिव सोच और लगातार उनकी मेहनत और सीखते रहने का जज्बा। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। यह हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए अवसर पैदा हो रहे हैं और सफलता के मायने जो हैं वो भी बदल रहे हैं। ऐसे समय में केवल बड़े सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने की तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। और ये जो कार्यक्रम है वो एक केवल कार्यक्रम नहीं है, ये एक सोच है, एक विश्वास है और एक ऐसी पहल है जो आपको आपके बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ हम बात करते हैं उन विषयों की जो आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है, कैसे सही डिसीजन हमारे भविष्य को मजबूत बना सकते हैं और कैसे आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास होता है, हर किसी के पास कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। कभी डर हमें रोक लेता है, कभी असफलता का भय हमारे कदम पीछे खींच लेता है और कभी लोगों की बातें हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति बिना संघर्ष के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। सफलता की कहानी हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। वो कदम हो सकता है एक नई शुरुआत का, एक नए विचार का या फिर खुद पर भरोसा करने का। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तब परिस्थितियां भी हमारा साथ देने लगती है। और आपका कल कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप अपने अंदर छिपी उस शक्ति को पहचाने जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम चाहते हैं कि आप अपने सपनों को सिर्फ सपने बनाकर ना रखें, बल्कि उन्हें पूरा करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाएं, क्योंकि भविष्य उनका होता है जो उसे बनाने की तैयारी जो है वो आज से ही शुरू कर देते हैं। तो आने वाले कुछ समय के लिए अपने मन को तैयार कर लीजिए, तैयार हो जाइए नई सोच, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो न केवल आपको नई जानकारी देगा बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल सकता है। याद रखिए दोस्तों, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं वही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इसीलिए अपने सपनों को मजबूत रखिए, अपने इरादों को बुलंद रखिए और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखिए। और जारी है यूं ही प्रोग्राम युवाणी भी, लेकिन फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है युवाणी, और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है आपका कल, जिसमें अगर आज एक खास विषय के बारे में हम बात करें जो हर युवा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो वो है कि आज के टाइम में यूथ के लिए बेसिक लाइफ स्किल्स क्या हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो अपनी बेसिक लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, और अपने जो इंटेंशंस होती है, जो भी वो काम करना चाहते हैं इन अपने फ्यूचर के लिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो समय है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग है। टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, और हर युवा अपने फ्यूचर को लेकर कई तरीके के सपने और चुनौतियां दोनों साथ लेकर चल रहा है। ऐसे में सिर्फ अच्छी पढ़ाई या बड़ी डिग्री ही सफलता की गारंटी नहीं है। आज के समय में सक्सेस पाने के लिए कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स की भी ज़रूरत जो है वो उतनी ही हो जाती है। ये वो स्किल्स हैं जो हमें सही फैसला लेने, लोगों से जुड़ने, मुश्किल हालात को संभालने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। आज हम इन्हीं बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लाइफ स्किल्स होती क्या है। दोस्तों, लाइफ स्किल्स का मतलब है ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने में मदद करती है। ये स्किल्स हमें सिर्फ जॉब नहीं दिलाती बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी हेल्प करती है। दोस्तों, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो अपनी बात सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर किसी के पास टैलेंट है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वो अपने टैलेंट का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और अगर किसी के पास पैसा है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो वो अपने पैसों का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़रूरी हो जाती है कि हर इंसान के पास ये छोटी जो लाइफ स्किल्स होती हैं वो होनी ही चाहिए। अब बात करें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल की, तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी अपनी बात को साफ, सरल और प्रभावी तरीके से कहना। आज बहुत से युवा अच्छे आइडियाज़ रखते हैं लेकिन उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या ग्रुप डिस्कशन, कि फिर किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करना। हर जगह कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है। अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, इसमें शामिल है सही तरीके से बोलना, ध्यान से सुनना, दूसरों को समझना और

अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। कई बार लोग सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं लेकिन लिसनिंग स्किल को भूल जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल और लिसनिंग स्किल जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप सही तरीके से बोलते हैं तो उसके साथ साथ में आपको लिसनिंग स्किल यानी कि जो अच्छे तरीके से सुनने की जो समझ है वो भी होनी चाहिए। याद रखिए, एक अच्छा स्पीकर जो है वो बनने से पहले अच्छा लिसनर बनना ज़रूरी हो जाता है। जब हम लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं तब हम बेहतर जवाब दे पाते हैं और बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। इसीलिए हर युवा को कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहिए। उसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, फिर कुछ लोग बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। आज का सबसे बड़ा टाइम किलर है बिना ज़रूरत सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। कई युवा सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और 1 घंटे बाद उन्हें पता चलता है कि समय तो निकल चुका है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने समय को सही कामों में लगाना। इसके लिए कुछ आसान तरीके भी हम अपना सकते हैं, जैसे डेली टू डू लिस्ट बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट काम पहले कर सकते हैं, अनावश्यक जो मोबाइल यूज़ है उसको कम कर सकते हैं, अपने गोल्स लिख सकते हैं, हर दिन कुछ समय सीखने के लिए रख सकते हैं। जो युवा समय की कीमत समझ पा जाता है वो जीवन में बहुत आगे जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग स्किल की, हर दिन हमें अपनी लाइफ में छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हम कौन सा कोर्स चुन सकते हैं, कौन सा करियर हमें चुनना है, किसके साथ दोस्ती रखनी है, किस अवसर को अपनाना है, बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ में वो हमको प्रभावित करते हैं। अक्सर युवा दूसरों को देखकर फैसले ले लेते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है तो वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन सही डिसीजन जो है वही होता है जो हमारी कैपेसिटी, हमारी रुचि और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। डिसीजन लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या इससे मेरा जो फ्यूचर है वो बेहतर बनेगा, क्या मैं इसके परिणाम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर इन तीनों जवाबों का जवाब जो है वो हाँ है तो आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। सही डिसीजन हम लेना सीख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं और इसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं, तो उसके बाद में बारी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दोस्तों जिसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस ना हो, लेकिन सफल और असफल लोगों में अंतर यही होता है कि वह समस्याओं को कैसे और किस तरीके से देखते हैं। कुछ लोग समस्या देखकर हार मान लेते हैं, कुछ लोग समस्या देखकर समाधान खोजते हैं। जब कोई समस्या आए तो घबराएं नहीं, स्थिति को समझिए, कारण खोजिए और विकल्प सोचिए और फिर सबसे अच्छा समाधान जो है वो हम चुनते हैं। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने ही आती है, इसीलिए प्रॉब्लम से डरने के बजाय उनसे सीखने की आदत हमें ज़रूर बनानी चाहिए। इसी के साथ आता है इमोशनल मैनेजमेंट। आज के समय में मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ गया है, स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का दबाव है, यंग प्रोफेशनल्स पर करियर का दबाव है, कई लोगों पर फैमिली एक्सपेक्टेशंस का दबाव है। ऐसे में अपनी भावनाओं को संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुस्सा, डर, चिंता, निराशा, ये सभी भावनाएं जो हैं वो सामान्य हैं, लेकिन इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम तनाव महसूस करें तो थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात जरूर कीजिए और अपनी फीलिंग्स को लिखिए, और जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी संकोच मत कीजिए। क्योंकि स्ट्रांग होना मतलब भावनाएं छिपाना नहीं है, स्ट्रांग होना मतलब उन्हें समझना और सही तरीके से उन्हें संभालना भी होता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो बेसिक लाइफ स्किल्स के अंदर आती है, और भी ऐसी बहुत सारी बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस

0: रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
5: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट चल रहा है आपका कल, जिसमें हम बात कर रहे थे बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में। दोस्तों, बेसिक लाइफ स्किल्स के अंदर एक ज़रूरी स्किल जो है वो ये भी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो आज के समय में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हर युवा को ये बात पता होनी चाहिए कि बजट क्या होता है, सेविंग्स कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी होता है। अगर ये सारी बातें हम युवाओं को पता है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अगर क्राइसिस आ जाते हैं लाइफ में तो हम उन उस चीज़ों से बच सकते हैं। पैसे चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, सेविंग की जो आदत है वो सभी में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती है, ये धीरे धीरे बनानी पड़ती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो एक बेसिक स्किल है, लाइफ स्किल है, उसके बारे में सबको समझ होनी ही चाहिए। उसके बाद में डिजिटल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि आज का युवा ऑनलाइन दुनिया में जी रहा है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जितने अवसर है उतने ही खतरे भी होते हैं, जैसे फेक न्यूज़, ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स, डेटा थेफ्ट, साइबर क्राइम। इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, OTP किसी के साथ शेयर ना करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रखें। स्मार्ट यूज़र बनना भी एक लाइफ स्किल है, जहां आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हर काम हम डिजिटल तरीके से करना सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहां पर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक स्मार्ट यूज़र बनना भी हमारे लिए एक बेसिक लाइफ स्किल का काम है। उसी के साथ अगर हम बात करें सेल्फ डिसिप्लिन की, तो मोटिवेशन दोस्तों हमेशा नहीं रहती है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो हमेशा काम आता है। कई लोग कहते हैं कि उनका मन नहीं करता, लेकिन सफलता सिर्फ मन करने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है नियमित प्रयास करने से। अगर आपका गोल बड़ा है, आपको बड़ी अचीवमेंट्स लेनी है, तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। समय पर उठना, समय पर काम करना, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना और लगातार सीखते रहना, यही सेल्फ डिसिप्लिन है। और कंटिन्यूस लर्निंग इसके साथ में की जाए तो वो स्किल बहुत ही ज़रूरी है, और जो स्किल आज काम आ रही है, हो सकता है कुछ साल बाद उसकी ज़रूरत कम हो जाए, इसीलिए सीखना जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और इस बदलते समय में हमें नई टेक्नोलॉजीज़ सीखनी चाहिए, नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, पॉडकास्ट सुनने चाहिए, कोर्सेज हम कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में, अपने क्षेत्र की जानकारी हम बढ़ा सकते हैं। लर्निंग दोस्तों एक लाइफ टाइम प्रोसेस होती है, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो दोस्तों, आज का युवा बहुत पोटेंशियल रखता है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, इन्फॉर्मेशन है और अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन इन सब का सही इस्तेमाल तभी होगा जब उसके पास बेसिक लाइफ स्किल्स भी हों। डिग्री जो होती है वो आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन बेसिक लाइफ स्किल्स आपको जिंदगी में आगे बढ़ाती है। कम्युनिकेशन आपको लोगों से जोड़ता है, टाइम मैनेजमेंट आपको प्रोडक्टिव बनाता है, डिसीजन मेकिंग आपको सही दिशा देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मजबूत बनाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके भविष्य को सुरक्षित रखता है, डिजिटल अवेयरनेस आपको ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रखता है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है, और कंटिन्यूस लर्निंग आपको हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो अगर आप युवा हैं तो अपने करियर के साथ साथ अपनी लाइफ स्किल्स पर भी काम कीजिए, हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट कीजिए, छोटे कदम उठाइए, नई चीज़ें सीखिए, गलतियों से सीखिए और खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता आती है सही सोच, सही आदतों और मजबूत लाइफ स्किल्स से। दोस्तों, और भी बातें होंगी खास

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक।

0: कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: दोस्तों, हर साल 30 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य लोगों को क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉयड्स के बारे में जागरूक करना और अंतरिक्ष से आने वाले संभावित खतरों की जानकारी देना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एस्टेरॉयड जो है क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से अधिकतर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। 30 जून की तारीख इसीलिए चुनी गई क्योंकि 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक बड़ी अंतरिक्षीय घटना हुई थी। माना जाता है कि एक क्षुद्र ग्रह या अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी के वातावरण में विस्फोटित हुआ था, जिससे हजारों पेड़ नष्ट हो गए थे। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी दर्ज अंतरिक्षीय टक्कर घटनाओं में से एक मानी जाती है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पहल का समर्थन किया और इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी। इस दिन दुनिया भर में वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्यार्थी और आम नागरिक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के समय में नासा, ESA और दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां ऐसे क्षुद्र ग्रहों पर लगातार नजर रखती है जो भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से वैज्ञानिक इनकी गति, आकार और दिशा का अध्ययन करते हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष केवल खोज और रोमांच का क्षेत्र नहीं है, बल्कि उसकी गतिविधियों को समझना हमारी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। विज्ञान और तकनीक के विकास से हम अंतरिक्ष के रहस्यों को बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं और पृथ्वी की रक्षा के लिए नए उपाय खोज रहे हैं। तो अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां प्राप्त करना और वैज्ञानिक सोच को, अपनी विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाए रखने के लिए इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के अवसर पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो दी जाती है। ऐसी बहुत सी बातें करेंगे प्रोग्राम में। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और भारत के उन महान इंसानों में से एक के बारे में बात करें जिन्होंने अपने ज्ञान, दूरदृष्टि और देशभक्ति के बल पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। तो हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी की, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी एक महान शिक्षक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी नेता थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। दादाभाई नौरोजी ने अपने जीवन का अधिकांश जो समय है वो भारत की जनता की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने में लगाया। दादाभाई नौरोजी की पुण्यतिथि 30 जून को मनाई जाती है और इसी दिन वर्ष 1917 में उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके योगदान और देश के प्रति उनके समर्पण को याद करने का अवसर देती है। दादाभाई नौरोजी का सबसे बड़ा योगदान भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन और विश्लेषण था। उन्होंने अंग्रेजी शासन की उन नीतियों को उजागर किया जिनके कारण भारत की संपत्ति लगातार विदेशों में जा रही थी। उन्होंने प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी यानी धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत की संपत्ति को अपने देश ले जा रहे हैं और इससे भारत गरीब होता जा रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया है। ये पुस्तक उस समय भारतीयों के लिए जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी और दादाभाई नौरोजी ने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अंग्रेजी शासन की वास्तविकता को दुनिया के सामने रखा। दादाभाई नौरोजी ने भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी भारतीयों की आवाज को बुलंद किया और वर्ष 1892 में वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले

पहले भारतीय बने। यह उपलब्धि केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय थी। संसद में रहते हुए उन्होंने भारतीयों के अधिकारों और समस्याओं को मजबूती से उठाया। साथ ही साथ उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने हमें सिखाया है कि देश की सेवा केवल संघर्ष के मैदान में ही नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण के माध्यम से भी की जा सकती है।

दोस्तों, जीवन में कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सारे संघर्ष समाप्त हो जाए। हर उपलब्धि अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर ही आती है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच ही यही है कि यहां संघर्ष कभी खत्म नहीं होते।

हम अक्सर सोचते हैं कि बस ये एक लक्ष्य पूरा हो जाए फिर सब आसान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एक मंजिल हासिल होती है सामने एक नया रास्ता, नई जिम्मेदारी और नई चुनौती खड़ी मिलती है। और अगर इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने संघर्षों का सामना किया है, उनकी सफलता का कारण ये नहीं है कि उनके रास्ते में मुश्किलें नहीं थी, बल्कि उनका राज ये था कि उन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। जब भी जीवन में कोई नई समस्या आए तो उसे बोझ न समझे, बल्कि उसे इस बात का संकेत समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ठहरे हुए लोगों के सामने नई चुनौतियां नहीं आती, चुनौतियां हमेशा उन्हीं के हिस्से में आती है जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। तो सफलता का अर्थ है समस्याओं का सामना करने की क्षमता का बढ़ जाना। जो व्यक्ति हर परीक्षा से सीखता है वही जीवन में लगातार आगे भी बढ़ता है, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। हर सुबह एक नई चुनौती है, हर चुनौती एक नया अवसर है, और हर अवसर आपको आपकी अगली सफलता की ओर लेकर ही जाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी सभा के शेष और कल के पहले सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी देशभक्ति गीत। किसान और बागबान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7 बजे से। चर्चाएं होंगी मौसम अनुकूल खेती के फायदे, गवार की उन्नत खेती कैसे करें। 7:30 पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम, और यही कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:30 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिए गुलदस्ता कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे। श्रोता सुनेंगे अपने ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मन भवन। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपने ईमेल भेजकर। ईमेल कीजिए मन भवन चोरू @gmail.com।

कल की पहली सभा में सुबह 6:10 पर चिंतन कार्यक्रम में सुनिए समय का सदुपयोग। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। 7:20 गान, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:20 पर। कल का अध्याय होगा 15। 7:30 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार चुरू। 8:30 पर कार्यक्रम सुनिए सुर संगम। 9:10 पर देशगान। 9:15 पर हम आपको सुनाएंगे साहित्य सुगंध कार्यक्रम में कविता पाठ सीमा से। 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत चित्र संसार कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुबह 10 सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11:05 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

दोपहर 12 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:23 पर माटी के स्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे कालूराम प्रजापत और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। दिन के 1:05 पर घर आंगन कार्यक्रम में चर्चाएं होंगी, स्कैम के खतरों से कैसे बचें, रात के भोजन के बाद सैर जरूर करें, चाय या कॉफी का सेवन कम से कम करें। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। आपको एक बार फिर बता दें, आज रात 9:15 पर श्रोता सुन सकते हैं अपनी पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भवन। शाम 7:30 और रात 10:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है।

0: है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said the collective responsibility of nations is to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. He said India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform.
3: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform. And since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
2: President Draupadi Murmu has called upon students

लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें। क्रांति फिल्म का ये देशभक्ति गीत, संतोष आनंद का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

क्रांति फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देशभर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके सुधार का काम शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों

0: उसे सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और उसके लिए जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री आज हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से मिट्टी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के मद्देनजर बचाव के तरीकों पर विचार कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी देशभर में कल से लागू होने जा रहा है। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वीबीजी रामजी पर पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
3: वीबीजी रामजी मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन से बढ़ाकर अब एक साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान किया जाता था, अब इसमें साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान रहेगा। कृषि मौसम में बुआई और कटाई के लिए मजदूरों की कमी नहीं हो, इसके लिए 60 दिन की राहत दी गई है। ये योजना ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और आजीविका सुरक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
0: वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार कल से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और व्यावसायिकता को कायम रखते हुए ऊंचाइयां छुएगी। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
4: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्तशक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में यह समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत

0: नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
1: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है, सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हों, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
2: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। VVG रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा। ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज

0: सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मानसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योगपीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योग अभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन, NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच आयोजित किया गया। मैच का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। रीनीट परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पहले चरण के दौरान मकान सूचीकरण और आवास गणना काम में धौलपुर जिले ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले की युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़कों माथे हिफाजत ने बधावण सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण अरवाना टेम सर अस्पताल पुगावण री अपील कीनी। वी बी जी राम जी कानून 2025 कालों देश भर में लागू भेजावेला। मनरेगा री ठौर लेवेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा ओहदारो कामकाज संभाल्यो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलों रा भवना री हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासा री बिरखा शुरू होवण रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश में हादसा वेवण और जमीन धस जावण री शंका वाली सड़कां री पिछाण करी ची है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चों आरा सुधार रो काम शुरू कीनो है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सड़कां माथे हिफाजत रे बारा में राखी जाए एक कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। गडकरी कहो के उचित निशान लेन मार्किंग और अंडरपास बनावण सागे अंतर्राष्ट्रीय मानकान मुजब सड़क इंजीनियरिंग काम लेवण री कोशिश करी जा रही है। श्री गडकरी सड़का माथे हिफाजत ने बधावो देवण में जनता री भागीदारी बधावण और मोटर गाड़ियां चलावण वालाओं यातायात नियमों री पालना करण री अरज कीनी। वह लोगों सड़क हादसा में जख्मी वेवण वाला री मदद करण अरवाने सही भगत बना अस्पताल पुगावण री अरज कीनी।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: सरकार मिट्टी और वहां सारू जरूरी खाद री मात्रा री जानकारी देवण बाबत मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा रा हिसार माए खेत बचाओ अभियान रा समापन समारोह माए आ जानकारी दीनी। वह किसानों मिट्टी री उत्पादकता बनाई रखण सारू खाद और कीड़ा मारण री दवाइयां जरूरत रा आधार काम लेवण री अरज कीनी। कृषि मंत्री कहो कि सरकार अल नीनो रा असर कम बिरखा वेवण री शंका न ध्यान राखता थका जरूरी इंतजाम कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: देश में काल 1 जुलाई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG राम जी लागू भेजावेला। आ देश का गांवई हलका माए माली व्यवस्था ने समावेशी और मजबूत बनावण सारू मील रो पत्थर साबित फैला। VBG राम जी रबारा माए पेश है न्यूज डेस्क सालेहा गाजी री रपट।
3: वीबी जी रामजी मनरेगा री ठोड़ लेवेला। इरा तहत गांवाई हल्का माए लोगा ने 100 री बजाय 125 दिन रा काम री गारंटी मिलेला। वीबी जी रामजी रा तहत मजूरा ने हर हफ्ता मजीरू रो चुकारो सीधो खाता माए करियो जावेला। तय मियाद माए काम मुहैया नी करावन री सूरत माए बेरोजगारी भत्ता मजूरी रा चुकारा माए मोड़ो वेवन परा क्षतिपूर्ति रो वैधानिक प्रावधान करियो जावे है। खेती बाड़ी री रुत माए बुवाई कटाई सारू मजूरा री कमी रोकण 60 दिन री राहत दिरी जी है। VBG राम जी गावाई हल्का माए आमदनी बधावन और काम धंधा री हिफाजत मजबूत बनावन री दिशा माए खास जतन है।
0: VBG राम जी 2000

0: 25રા પ્રાવધાનારા મુજબ કાલું કામ રો ભગત સમારે 9 સિંજા 5 બજા તાઈ રહેવેલા સેના અધ્યક્ષ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી આજ સેના પ્રમુખ રા હોતા રિટાયર વેક્યા એ મોકે વે કહ્યો કે ફૌજ ને ફૌજિયા કમાન્ડરા પહેલે વાળા ફૌજિયા મારા પરિવારા હર દેશ રી જનતા રા અટૂટ ભરોસા તાકત મિલે હૈ जनरल द्विवेदी कहो के भारतीय सेना लारला 2 साल माए हर मोर्चा माथे तुरंत काम करन राबूता संतुलन हर सावचेती लगातार बनाई रखी।
1: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी नुआ सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने जिम्मेदारी सौंपता थका जनरल सेठ री अगुवाई माए भारतीय सेना री माथो ऊंचो करण वाली परंपरावां बनाई राखता थका व्यावसायिकता और पक्का इरादाओं नुवी ऊंचाइयां हासिल करण रो भरोसो जतायो। सेना री दक्षिण पश्चिम कमान रा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ही आज रिटायर फेंक्या। ई मौके वे जयपुर सैन्य स्टेशन रा प्रेरणा स्थल माथे शहीदा ने सिरदा भाव सागर याद कीना। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो के करीब 40 साल री सेवा रे दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर और आतुणी सरहद माथे कई खास कमान और स्टाफ री जिम्मेदारियां निभाई। वह इन्फेंट्री डिविजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर री जिम्मेदारी कामयाबी सागर पूरी कीनी। नई दिल्ली में काल भया ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पाछे जयपुर आवण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो शहर में न्यारी न्यारी ठोड़ा स्वागत करी चियो। मुख्यमंत्री राज्य में जल सुरक्षा और पूरा विकास माथे पड़वा वाला सकारात्मक असर रे बारा में विचार बताया। वो कहो के ओ करार विकसित राजस्थान री मजबूत नींव बनेला। श्री शर्मा कहो के सरकार जनताओं करी चे हर वायदा ने पूरो करण री कोशिश कर रही है।
2: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हों, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। राज्य री सरकारी स्कूलां सारू किणी हालात माए हर जर्जर और असुरक्षित भवन काम नी लेवण रा हुकम दिया चिया है। स्कूल भवना री हिफाजत और मरम्मत रा कामा रो जायजो लेवण सारू आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए प्रारंभिक शिक्षा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव आ जानकारी दीनी। यादव सगली स्कूलां रा भवन री गहराई उ जांच करावण रा हुकम दीना। वे बतायो कि लारला माली साल माए 2032 स्कूलों जुड़िया विकास और बनाई चुनाई रा काम करी चिया, जदके चालू माली साल माए करीब 550 करोड़ रुपया रा खर्च वाला काम कराया जावेला। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन काल जयपुर माए शुरू भेला। विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस मुद्दा माथा वेवण वाला ई सम्मेलन रो उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेला। ई मौके NCEG प्रदर्शनी लगाई जावेला और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा नुआ कामारी शुरुआत फैला। सम्मेलन रा दूजा दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जावेला। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोई इन कार्यक्रम माए शिरकत करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में खबर नवीसा सागर बातचीत रे दौरान आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकारी सेवा बेहतर तरीकों पुगावण नुआ कामा और डिजिटल सेवा मारी पहुंच जनता ताई बधावण

0: माई उस सम्मेलन खास साबित फैला।
1: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन रे बारा में और ब्यूरो माणा खबर नवीस हूं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में आवता 3-4 दिन में चौमासा री बिरखा शुरू वेवन राजचोखा हालात बनियोड़ा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र 2-4 जुलाई बीच राज्य में चौमासा री बिरखा शुरू वेवन रा आसार चताया है। इन दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई ठोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनियोडो है। लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। बाड़मेर माए आज आंधी चाली। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली राव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथे हिफाजत ने बद्धा वन सारू कहो। सड़क हादसा माए जख्मी लोगों ने मदद करण अरवाना टेम सर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। VBG रामजी कानून 2025 काल देश भर माए लागू भेजा वेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा होदारो कामकाज संभालियो। तजरी सगली सरकारी स्कूलां रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश माए आवता 2-3 दिन माए चौमासारी बिरखा सरूफे वन रा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध।

0: रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कार्यक्रम किसान वाणी सुनना रहे सभी किसान भाई बहना ने, भाई अर्जुन का निशु
5: और गंगा का निशु, मोकला मोकला,
4: राम राम, राम राम गंगा भाई, राम राम,
5: राम राम अर्जुन भाई। देखो आप गया चौपाल, और देखो के बीच में आपने मौसम यहाँ लगे के अब की बार तो टेमू पहली देखो के अच्छी बारिश हो रही है रोज की बोबन, तो फिर तापमान जो है फिर बढ़ने लगे, और आप फसल भी लगभग लगभग लोग टाइम, तो अब थोड़ी सी चिंता भी हुए, और अब की बार भी पहले भी कह रखे हो जिसका मौसम वैज्ञानिक है वहां कह रखे हो मौसम को कोई निश्चितता को नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो क्या किसान मिनखा, और किसान को तो वो क्या करे ना कि भाई आपको जो वो हुए न काम वो करते रहना चाहिए, कर्तव्य हर आदमी करते रहना चाहिए, बाकी की ओर देखो क्या प्रकृति पर है बा कद बरसे कद नहीं बरसे फसल दे या नहीं दे, लेकिन आप अपन काम करा
4: काम करा।
5: तो इन टाइम में देखो क्या एक आपने करा के प्री मानसून में आप सारी फसल बा दिया करा, पर गुआर लगभग आप रखा करा क्योंकि गुआर जो है बहुत एक हिसाब मानो चाह के बहुत नाजुक फसल हो है, देखने में बहुत कठोर अलावनी करे टाइम यहाँ लगे के खतरनाक है, लेकिन बा होने में बहुत बारिश हो जाए तो बा को उगे और उगते प्रतावड़ी हो जाए तो वो खराब हो जाए, तो बहुत नाजुक फसल है भी ना हवा भी बहुत जल्दी लगे के खातर आप गुआर ने एक बार क्योंकि बारिश को बीच में थमको आया कर जब आया करा तो भी ने राख रखे है, और बिया भी क्या करे ना कि गुआर थोड़ो सो के लेट बाय जा लेट लाउनी आवे दीपावली के बाद में आवे,
4: दीपावली बाद में
5: तो भी साबु लेने वाली सी फसल है तो आप भी ने राख रखे है, तो इनके खातर जो भी किसान भाई देखो के गुआर के खातर जमीन राख रखी है गुआर बाणु चावे तो उन्नत खेती जकी है गुआर की बा करनी चाहिए, क्योंकि आप देखा गे जो 100 बीघा के मायने जो को नाज आप लिया करता वो 15-20 बीघा में ले लग गया, तो बी साबु हर एक फसल को जो को बीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बीज के ऊपर अपनी बाढ़ने को तरीको है नई तकनीक है उनको ऊपर निर्भर करे का आप उत्पादन कितन को ले सका, तो गुआर को भी आप ही करनु चाहिए अपन,
4: और आज भी देखो के जहाँ गुआर आप थोड़ा सो या लेट ही खतर टेम्परेचर तापमान है वो यहाँ देखा के भी 30-35 का माने रहे तो आप फसल बहुत बढ़िया पैदावार हो, क्योंकि एक ऊपर सबसे ज्यादा वो है कि अपगार का माने आप देखा कि आपनो तावड़ो बहुत जोर को पड़ रहे 40 पर जा रहे 42-45 पर जा रहे, तो एक खातर जो अब टाइम है जी मान लियो कि 5-4 दिन कोई छाटा छिड़को होने की संभावना है तो बी के बाद में अगर बढ़िया बरसात हो जाए तो भी टाइम हो तो एक महीने तो सबसे पहले आपने जिसकी खेती है आपने खेत है जी मान लो 100 बीघा है 50 बीघा 10 बीघा 5 बीघा भी की अपा माटी जांच करवा ले वहां पहले तो
5: बिल्कुल,
4: क्योंकि हर प्रकार से आपने यहाँ देखा कि कई बार आप यहाँ देखा कि बहुत बढ़िया बीज गिरे है बढ़िया खाद गिरी है फिर भी देखो भी माने बैठे को नहीं, तो सबसे पहले अगर अपना खेत की माटी जांच करवा ले तो भी अपन पतो लग जा भी कौन सा पोषक तत्व है कौन सा कोनी कौन सी फसल मानेगी कौन सी कौन मानेगी,
5: बिल्कुल,
4: तो भी के आधार पर अगर आप कोई खेती कराने तो आपने मोकड़ो फायदो जावे।
5: बिल्कुल, और ठावड़ी बात बताई, थेर फसल कोई भी बाओ माटी की जांच तो करवानी और हर तीन साल के बाद में रिपीट करवानी बिन। और विकास का भी सजेशन है, भी कमाई ना कि भाई खाद की

0: ग्वार को बीज को है, कई बार आपने के वह के एक बीज में बीज से लेना शुरू करो हो और वो लगभग लगभग नहरिये को बीज हो जग मायने सिंचाई चीज है और आपने ले आके बाद देता, कई बार बारिश ठीक होती जब बीज हो उत्पादन दे भी देते, बारिश नहीं होती तो वो कौन होता। तो आप जो को बीज है वो यो लावा के आपने क्षेत्र को लगभग जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरो को पूरो बी को एनवायरमेंट एक सो है, बी की लगभग माटी भी एक सी है और बी को लगभग टाइम जो है ना फसल को भी अपनी फसल 60 दिन में तैयार हुआ है 90 दिन में तैयार हुआ है यो है तो वो भी एक जिसो सोयो अलग हुआ। तो उन एरिया को गुआर जो को है बीज वो रूप में वो आप लावा या तो जो गांव में है या आसपास का गांव में आसपास के कोई भी किसान के बढ़िया फसल होएड़ी है और वो छांट के बीज कर रखे है या आपने खेत में पिछली बार बढ़िया गुआर हुए और छांट के बीज आप कर रखे हो तो वो काम में ले लें तो सब बढ़िया तो वो है। और दूसरी बात यदि इसो नहीं है तो कोई परिचय की जगह लेके आवा या नहीं का आप गुआर ठाके ले आया बाजारों कठो ओहे बाद में बेरो पड़ेगा कोई तो अच्छो ही को नहीं हो आपने जमीन मान्यो ही को नहीं
1: मान्यो को नहीं। देखो ये बहुत बढ़िया बात बताई कि आपने क्षेत्र का मैंने आपने खेत में अगर बीज तैयार करेड़ो है तो भी को आपने रिजल्ट को बेरो रहे कि भाई का मैंने इतना बुनटा ही हिसाब से लाग छी का फड़ी लाग छी हिसाब से इनके तो तावड़ो है कितनी या मान लो बरसात के भी के हिसाब से हो गए या मान लो कई बार आप यहाँ देखा के थैली लिया आप पड्डा हाथ को नहीं बीको पर थैली बहुत बढ़िया गुआर है वो गुआर के अलग क्षेत्र से बनेड़ो है आपने जो कोई इलाको है आपने जी मान लो कोई भी किसान या दे बढ़िया गुआर हो रहा है फलाना जी बहुत बढ़िया गुआर है तो वो अगर आपने क्षेत्र में हो है तो बिसे लिया आपने किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो बिसे लिया अगर वो फसल अगर आपने क्षेत्र के मायने होड़ी है अरबी को आप प्रयोग करेंगे तो बढ़िया पैदावार होगी। दूसरी बात अगर जिद भी आप मान लो के लगभग किसान या करे कि आपकी जमीन सब तैयार कर रखी है भी बढ़िया खाद दे रखी है बिना दोबर पलटी मार रखी है और अब यहाँ उड़ीक हो रही है कह बिकमान खरपतवार हो रही है बहुत जोर की तो बरसात आते एक पलटी और देते हुए तो सबसे ज्यादा बिकमान है कि जमीन ने बुरबरी करनी बहुत जरूरी होगा
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जितनी जमीन आप बुरबरी रखेगा तो जितनी फसलवार बढ़िया पैदावार होगी। एक मान हो जगह कई बार आप देखा कि आपा बहुत बढ़िया क्षेत्र को बीज है आपने इलाकों को बीज है और जमीन एकदम बुरबरी करी है तो अगर भी टाइम बहुगा तो मोकड़ो फायदा होगा और आप ये सीधे लीजिए करेगा तो भी कमाने भी देखो बड़ा फर्क पड़ेगा।
0: और गुआर को विशेष कर भुरभुरी जरूरी है क्योंकि गुआर लिकड़े बारे ने तो उनकी जो दो पत्ती है बाकी फसल की मूंग की मोट की रोर की बिंगी देखा आप दो पत्ती और गुआर की देखा गुआर की बहुत गुद्देदार पत्तियों है नाजुक हुए
1: नाजुक
0: तो बे जोर लगा कौन कहीं जमीन यदि ऊपर कर रही है तो वो गुआर निकलेगा कौन बारे और फसल तो फिर भी निकला हुआ है गुआर को निकलेगा तो भुरभुरी जमीन की बात करिए वो बहुत जरूरी है बहुत महत्वपूर्ण है गुआर बाने के पहली। और फिर दूसरी बात देखो के गुआर अपा बा भी लियो भुरभुरी जमीन बा लियो एक प्रचलन सो आ गयो लगभग गुआर को के गुआर के छिड़को मार दें के गुआर में कौन सो निनान करनो है क्योंकि गुआर थोड़ा सो बड़ो जा घास नोन कौन दे तो छिड़को मार दें। गुआर की जड़ जके कोई भी फसल की हो छिड़को जो को है वो खेती को कोई हिस्सो को नहीं केठा किन्नु आयो है वो खूड ए लिए जरूरी है के बाद जो खूड खड़े हुए गो भी के बीच में नाज उगेगो और फिर बारिश होगी तो भी वो खूड भूजनेगो और माटी जकी है बा उनकी जड़ा के लागे तो जड़ मजबूत हो जाएगी हवा भी चलेगी पानी भी चलेगो तो जड़ मजबूत हो जाएगी तो पौधो भी मजबूत होगा। अब देखो कह जड़ जकी है बाहर नया निकल रही है वो मजबूत है को नहीं तो क्या होगी फसल। तो बिजाई के लिए जो को तरीको है कोई भी फसल हो और गुआर ने बेरो को नहीं किन्नू किया और यो छिड़के की बात किन्नू चाली के ऊपर चलन किन्नू आयो खेती के मायने छिड़का को कोई भी तरीको को नहीं
1: तरीको
0: खूड जो को है वो होना चाहिए खूड छोटा बड़ा डूंगा कम डूंगा वह हो सके हैं वह कोई भी फसल के लिए अलग अलग बात है लेकिन खूड होना चाहिए
1: खूड होना चाहिए
0: तो बुआई जकी है बा खूड वाले तरीके होने
1: चाहिए। देखो एक माने एक तो फायदा हो जगह आपने जिया मान लो के अपा लेने 5-7 दिन पहले खेत बुआयो और अब देखो हवा चल रही जोर की हवा चल रही है तो भी कमान उड़ उड़ की बाकी जड़े तो पूरी निकल गई भी आप से बुआ दिया तो बाकी जड़े निकल अगर आपा बिने हल से बुआता या आप कल्टी से बुआता तो भी कमान देखो कि उम्र बराबर हो तो मतलब देखो आपा पौधा भाई है भी के जड़ को निकलती तो भी कमाए ना धीरे धीरे धीरे वो एक मजबूत हो जाती है और भी जड़िया के बीच में सूखने की जगह है वह बहुत कम हो जाती
0: है। और एक वो जो को थे बात करो कभी उम्र है अभी कहे बारिश हवा तो चली बारिश भी यदि 5-7 दिन नहीं हुआ बीच में तमको काजा तो बीके माय नमी भी बनी रहे क्योंकि उनका दोनों का नहीं जो को हिस्सो है ना वो हवाओं भी बचावे और तावड़ियों भी बचावे।

0: अवड़िया बताओ और नमी बनी रहे,
1: बिल्कुल नमी बनी रहे, बीज झुको है वो बच्चो रहे, वो
0: बच्चो रहे। दूसरी बात यह मान लो कि कई बार आप यहाँ देखो बहुत बढ़िया आप खुड़ से हड़सा बाइड है या हल चाहिए आप यहाँ कुजुरी को नहीं कल्टी हो या ऊंट को हो बैल को, अगर आप हल से बाइड हो अगर बढ़िया नाच खड़े है तो अगर आप टाइम पर भी खरपतवार कर दियो निदान कर दियो अगर टाइम पर है तो यहाँ मान लो के गुआर है जो थोड़े धीरे धीरे धीरे धीरे चाल तो मजबूत होने लग जाए, क्योंकि गुआर की जखी भी है जमीन की शोषण धारण है जो जल धारण है ना वह यहाँ मान लो के बिना अगर नमी भी मिलती रही थोड़ी थोड़ी तो वह भी देखो मजबूत हो जैसी क्योंकि जड़ नीचे चल है।
1: बिल्कुल, और एक आप निनान की बात करा थे नमी की बात करो के छिड़के गए नाज में आप निनान करा को नहीं ऊपर की परत है ना जम जाएगी,
0: जम जाएगी
1: और फिर एक तो नमी को नहीं बनी रहे बिंग मायने
0: हाँ।
1: और दूसरी बात अभी ने पोषण को मिला है हवा और धूप बराबर को मिला है, तो जो निनान है वो है भी है निराई गुड़ाई जरूरी है फसल का मायने कोई भी फसल हो बिंग मायने नमी बनी रहे क्योंकि माटी की जो यहाँ पा खूब कृषियों के संगा बिकी एक परत बन जाएगी हवा बीच में आ जाएगी
0: हाँ।
1: और फिर बार नमी बनी रहेगी फसल
0: रहे।
1: की जल्दी बिना सुकोड़ को नहीं खेत का मायने तो बी के लिए भी जरूरी, तो निराई गुड़ाई भी हर फसल के लिए जरूरी है गुआर के लिए भी जरूरी है
0: सर हाँ। और दूसरी बात अगर आपा कोई किसान या देखे के भी माने बीज में तो बाजार से लाई गिरा तो अभी को पक्को भी लेना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हर बार आप यहाँ देखा के भी बीज भी बहुत बढ़िया ले आया खेती बाड़ी की बहुत बढ़िया है लेकिन वो उग्योग होने के कारण हो तो बिल्कुल सागे अगर बीज लेते टाइम अगर बिल अगर पक्को ले लिया आपा तो बे धोखा देरी सा बच सका।
1: बिल्कुल यह थे बहुत ठावड़ी बात बताई है, सिर्फ एक ही चीज को बिल नहीं कुछ भी ला आपा आपने खेती में जुड़ेड़ी कोई भी चीज लेके आवा कोई उपकरण लेके आवा कोई बीज लेके आवा कोई दवाई लेके कुछ भी लेके आवा आप पक्को बिल चुको जरूर लेके आवा। जहाँ थे पक्के बिल की बात करी है दुकानदार दो तरीका बिल रखा है, एक डायरी सी है इधर रखा है बीमा आप हाथ लिख के बीमा मायने दुकान नंबर भी का लाइसेंस नंबर कुछ को नहीं हुआ वो लिख के दे दियो काम को नहीं आवा गो बीमा मायने रसीद बनेड़ी हुआ पक्की उनकी दुकान की बीमा मायने भी का लाइसेंस और सबका नंबर हुआ बी पर बिल बनवा के लेके आवागा तो काम आओगो। जहाँ थे धोखाधड़ी की बात करो आप 5-6 महीना बाद में बेरो पड़ेगा अपनी फसल को क्योंकि गुआर काट के लावा में जो बेरो पड़ेगा तो बी टेम फिर कुण धनी दोरी, तो यदि आपने करना है अपना पक्को बिल है तो आप जास कहाँ भी के लिए उपभोक्ता मंच बनेड़ो है उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए और भी मैं आपने आपनों जो को नुकसान हुआ अभी को फायदो मिल सके तो ये ध्यान है ये सारी चीजें कोई भी चीज खरीदना तो ध्यान रखा ध्यान रखने की
0: ध्यान रखा। दूसरी बात के कई बार आप यहाँ दुकानदार कह देगा 50 रुपया थोड़ा ज्यादा लाग सी बिल को के कर चो, अगर आप किसान अगर 50 रुपया ज्यादा भी लागे तो आपने कोई दिक्कत वो नहीं देखी भी बिल पक्को रहना बहुत
1: जरूरी है बिल्कुल।
0: और देखो के गंगा भाई बतलाऊ तो आप और ही कर और किसानों करा दिया मनोरंजन और सुनाओ एक भजन
1: बिल्कुल।

0: तो देखो एक भजन सुनियो पीरू का और साथी के बाद का मायने। और देखो गंगा भाई के अप्पा बतलाव ना कर रहा है अपने खेती बाड़ी के मारे के गुआर की। और अप्पा देखो अब भी बात कर रहा है अपनो क्षेत्र अपनो वातावरण भी क्षेत्र के मायने अगर कोई भी तैयार हो है भी को अगर प्रयोग करा तो आपने मोकड़ो फायदो जो है। और एक बात देखो एक ठावड़ी चर्चा है कि अपनो जो भी क्षेत्र है अपनो मौसम के अनुकूल अगर आप खेती कर ले वहां तो आपने बहुत मोकड़ा फायदा हो जाए।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि फायदा हो जाए कि मौसम के अनुकूल अगर कोई खेती करा तो अपन ये भी बेरो पड़ जाए कि भाई इतना दिन बरसात होगी कोई ओ बीज ले आऊंगा आपा ये तो टाइम पर पक्का कोई हो कोई आपदा होगी तो अपन बेरो पड़ जाएगा। बी के हिसाब से अगर कोई खेती बाड़ी करा तो भी कम देखो आमदनी ज्यादा रहती है लागत कम होगी।
1: बिल्कुल या ठेठावड़ी बात बताई है लागत आले। और किसान ने तो सौ ज्यादा सोचनु यो ही है कि कम लागत आले खेती करेगो तो फायदे में
0: फायदा
1: रहेगो।
0: रहेगा
1: और उत्पादन जो को है वो देखो के बड़े बीज जदि को जदे स्थानीय मौसम के हिसाब हु खेती करी
0: खेती
1: जागी,
0: करेगा
1: क्योंकि आप बीज ला के नहरिये रे गेर दियो तो आपर लेम्बो होवेगो कोनी, तो
0: वो को
1: नुकसान हो
0: नहीं
1: जाओ, लागत ज्यादा हो जाएगी,
0: ज्यादा हो जाएगी।
1: उत्पादन होगो कोनी। तो जो को मौसम अनुकूल या फिर आप वातावरण है अपनी जमीन है बीका अनुकूल जो को बीज है बीका जो तरीका ही भी कई साबुन खेती करा, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका भी वही है। भाई अपा रेगिस्तान में बारह बादाम बाग बैठ गया तो आप कह देंगे वो तो जांगा भाई, लेकिन भविष्य के लिए के उनको परिणाम होगा। कुछ एक छतरी सा जगह मैंने पहली भी वैज्ञानिक का मना करो कि अठैया फसल ना बाई जा, और उनका बहुत साल बाद में परिणाम आया कि बटे की जमीन जो है वह बंजर होगी।
0: बंजर
1: तो
0: होगी
1: आप वही फसल लिया जो अपने मौसम के अनुकूल है अपनी जमीन के अनुकूल है और आप पानी जो को विशेष कर जमे नमक है जमीन को पानी दे रहा तो इसी फसल बावा जमे पानी कम कम
0: कम
1: लागे,
0: कम हाँ
1: क्योंकि ज्यादा पानी दे दियो तो अपनी जमीन खराब हो
0: खराब हो
1: जाएगी।
0: जाएगी
1: तो ऐ के खातर सिर्फ मौसम अनुकूलित नहीं आपन जो को जमीन है भी के अनुकूलित खेती करा पर बीज भी उसको काम में लेवा और जो को उत्पादन की सोचा कि बहुत हद ज्यादा उत्पादन हुआ बीती भी नहीं सोचा, क्योंकि फिर 10 साल बाद में 15 साल बाद में भी जमीन को के परिणाम होगो भविष्य के होगो वो कौन कहे जा सके। तो अपना बूढ़िया क्या करता पानी की बात क्या करता के बहुत कम पानी उनावा पानी ना डोलो क्योंकि मिलेगो कोनी।
0: मिला होगा नहीं
1: तो केठा आगलोर पिछलो जन्म कर देखियो, पर बा को मकसद यो हो के जो को आने वाली पीढ़िया ही बा के लिए आप सुरक्षित वातावरण छोड़ के जावा सुरक्षित संसाधन छोड़ के
0: हाँ
1: जावा
0: संसाधन
1: और वह आज भी अपने काम आवे। तो आप भी बस सोचा कि अपनी आने वाली पीढ़ियां ही बांके लिए अपना अपनी जमीन जी के बस

0: सुरक्षित छोड़ के जहाँ बंजर बना के नहीं छोड़ के
1: नहीं जाना। और देखो एक मान थे बहुत बढ़िया बात बताई, जैसे बुढ़िया अब आप भी कहता के घी ढोलेड़ो पोसा जा पानी ढोलेड़ो कौन पता, क्योंकि वो जमान हो के सिर पर लाता मटका धर धर की कुआ में लाव खेच खेच के पानी लाता, तो बिल्कुल पानी की कीमत की भेरो ही। अब के आजकल तो देखो के टूंटी खोल दी छोटे टापन के दे टूंटी बंद कर दे चालू कर दे बस बैक जाने को नहीं पानी की कीमत कभी पानी कहीं आ रही है। तो ये कहा दूसरी बात जट्ठे भी आप कोई फसल ले वातावरण के अनुसार थे तो अपन मिश्रित खेती करनी बहुत जरूरी है, एक पर आधारित नहीं। ये हम जी मान लो कई बार आप यहाँ देखा अब कर खाली गुहार गुहार कर दे बात यहाँ नहीं, हमेशा ये बात को ध्यान रखो मिश्रित खेती करनी बहुत जरूरी है। भी आपने ज्यादा है तो आप यहाँ देखा ये आवड़ी बहादुर कर दी मोट कर दी हिसाब से करनी, लेकिन एक के ऊपर आधारित नहीं रहना। कद अब यहाँ मान लो कि कोई जमाना कद मर जाए कहीं मूंगा को मर जाए कहीं मोटा को मर जाए कहीं गुहार को कहीं बाजरे को, तो अगर आप यहाँ देखा कि कट्ठा न कट्ठा आप दानो लेके घर में बढ़ सका
0: बिल्कुल। और मिश्रित खेती के साथ साथ फसल चक्र अपनानो भी जरूरी है। पिछली बार गुहार हो उठा की बार गुहार नहीं, पिछली बार बाजरो उठा का बाजरो नहीं, फसल भी बदल बदल के पावा तो ज्यादा फायदो रहे, जमीन भी खराब को नहीं हुआ और उत्पादन भी बढ़िया हुआ
1: बढ़िया रहे। और देखो आप बतलाव तो और भी कर सिया और आप ली घड़ी को इशारो कह के किसानों बात करने की इतनी इजाजत दे दो, फिर मिलन लेवा सीख करा
0: राम
1: राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत सीमा मिश्रा और साथियों की गायस लोक रचना के साथ।

आकाशवाणी चुरू से समय आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं सीमा मिश्रा के गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अलका याग्निक कुमार सानू के गाये रंग फिल्म के इस गाने के साथ, समीर का गाना, अनदिम श्रवण का संगीत।

क्योंकि फिल्म का गीत, अलका याग्निक की आवाज, समीर का गीत, हिमेश रेशमिया का संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, केशव देव तंवर के साथ।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका अग्नि की ही आवाज में क्या दिल ने कहा फिल्म का ये गाना, संजय छेल का गीत, हिमेश रेशमिया का संगीत।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात

की आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

हम तो मोहब्बत करेगा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज एट 9।

0: विनय संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातियों बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य

0: जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्डधारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।

0: दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष

0: कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework.

जहाँ दोस्तों आपके ईमेल्स पर छेड़े हैं आपने कुछ नए पुराने तराने और कार्यक्रम है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम मन भवन। और आज का कार्यक्रम लेकर आज आपके साथ आपका रेडियो दोस्त केशव देव तंवर। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में शेष नाग फिल्म का ये गाना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पसंती आप सभी श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता हैं, लिखते हैं मां नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से, राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, द्वारकाबाई सेन और इनके परिवार के सभी सदस्य, इंदौर लिम्बोदी से गिधारीलाल चौधरी, मनीषा चौधरी और इनके सभी साथी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बोड़ागाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल विश्व खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी दीवानशी, वाणी आरबी और जीवन बुक, मनजीत सिंह, अर्षदीप, आकाशदीप, कर्मजीत और इनके शाला परिवार के सभी सदस्य लिखते हैं। आप लिखते हैं खोरी जिला झुंझुनू से और इनका गृह जिला है हनुमानगढ़। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, साइना और मैंडी शर्मा। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिस्ता पलक, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना यश मंसूरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गोरी और ओम कुमार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और इनके सभी साथी। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। कोंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी, राजेश, राकेश, ऋषिता और इनके सभी साथी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके सभी साथी। गोयल जिन सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इशाक और बब्बू डब्बू। आप हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजी

वीए राधिका अनिष्का और तन्मय बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता डिंपल और इनके सभी साथी आप सभी ने सुना शेष नाग फिल्म का ये गाना। अब आपके लिए है कार्यक्रम का अगला गाना यारियां फिल्म का ये गाना मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा की आवाज इरशाद कामिल के बोल मिथुन का संगीत

यारियां फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, पसंद थी हमारे इन सभी श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़से, विनोद खड़से और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं जलालाबाद विश्व से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, निमित और दिशानी, लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र और नरेंद्र। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, गांव पीपर लोडसर गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश, बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, स्मर्थ, शौर्य और इनके सभी साथी। मोरटका माफी जिला खंडवा से हमारे साथी हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, अमन, मानस और कनिका। आप हमारे श्रोता हैं, लिखते हैं ग्राम पंचायत सिरचला फवारा चौक जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची, सोमल, कार्तिक, सचिन चौहान और इनके सोनग्रा परिवार के सभी सदस्यों की ओर से इस गीत को सुनना चाहते हैं आप भी हमारे श्रोता। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या और सुचा सिंह, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, निहारिका वंश और इनके बत्ता परिवार के सभी सदस्य। छोटी बलिया करजत मुंबई से हमारे श्रोता हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना, सदफ, आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद और इनके सभी साथी। कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंशा, आशु अहमद, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति। आप हमारे श्रोता हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेक के यशोधरा, श्राव्या और इनके सभी साथी। गोगांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान और अब्दुल गफार, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉ रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू और इन्हीं के साथ हैं गुड्डू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार, चक पांच एमडी पत्रोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और डॉ सुनील। आप हमारे साथी हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार। आप सभी ने सुना अपनी पसंद का ये गाना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम मन भवन। सुरेश वाडकर के साथ अनुराधा पौडवाल की आवाज, लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का ये गाना, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीतकार आनंद मिलिंदा।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम मन भावन किशोर देव तंवर के साथ। अंतराल से पहले आपने सुना लाल दुपट्टा, मलमल फिल्म, मलमल का फिल्म का ये गाना, और इस गाने को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। आप हमारे श्रोता हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी शेखावत, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, राही श्रीमती सरिता गवहानकर, परिणीता, सिद्धांत, अर्जुन और इनके साथ हैं टुक टुक। आप हमारे श्रोता हैं बादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहानकर, सुरेश के साथ हैं सुमित और कुमारी ध्वनि। आप हमारे साथी हैं, इन्हीं के साथ में है प्रिंस और एकांश, सभी साथी गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई, महेश्वरी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मिक धाड़े, नीना धाड़े और स्वप्निल धाड़े, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रिस्टो, रोजी पर्ल और फिलिस। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हमारे श्रोता। आप हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष मेरठ कैंट से हमारे श्रोता हैं, दिग्दर्शन कवि।

गीता गौड़ और इनके सभी साथी, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नृति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। और ये हमारे श्रोता हैं गांव नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या और इनके साहू परिवार के सभी सदस्य।

आरपार फिल्म का गीत था मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और ओपी नैयर का था संगीत। आवाज थी गीता दत्त की। आवाज के साथ इस गीत को सुनना चाहते थे हमारे श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके सभी साथी। आप हमारे श्रोता हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार पोडाना और इनके सभी साथी। आप हमारे श्रोता हैं, इसी गीत को पसंद करते हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव, डोली बेबी पूजा, राधिका प्रभादेवी और मास्टर अल कबीर। आप लिखते हैं डोंडी लोहरा बालो छत्तीसगढ़ से, इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे श्रोता नर्मदा पार्क मंगल बेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और इनके सभी साथी। ऑरेंज सिटी नागपुर से बिठल जाधव, अनुसुईया, पवन राजे और इनके सभी साथी। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से हमारे श्रोता हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत और चेतन नाटा, इसी गीत को पसंद करते हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा, अभय और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे हमारे श्रोता। आप भी आप हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आप हमारे श्रोता हैं माल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नेटू रक्ष मल्होत्रा, कोयल नानक चंद और इनके सभी साथी। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोमल और कोयल डुग्गू और भाविक। गांव लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य

से परदेव के हमारे श्रोता हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। आप सभी ने सुना अपनी पसंद का ये गाना। ये गीत आपके लिए पहुंच रहा है मोहम्मद अजीज की आवाज में नगीना फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद करने वाले श्रोता भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कला झुंझुनू से, महेश चानू, भादुर बास झुंझुनू से,

इसी गीत के लिए पसंद सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बिदासर झुंझुनू से, राजा नंदवाणी रजत रोहित केशव मुकुल मनीष सुमित साक्षी और किरण नंदवाणी नैसर्ग चुरू से, जगदीश मंडल अभिषेक मंडल गुदरी बाजार चुरू, राजेश राकेश कुमार दुधवा मिठा चुरू, अरविंद खाड़िया लादरिया चुरू, निशांत कुंडे ओम प्रकाश कुंडे मानसी चेतन और इनके सभी साथी गोंदिया महाराष्ट्र से।

मन भवन कार्यक्रम में अगली पसंद आप सभी श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता हैं भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा, सोंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश और इनके साथ इनके परिवार के सभी सदस्य, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, दक्षिण रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर, खुशनशीब अब्दुल हक, जियाउल हक, बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, कोहका बिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगहेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगहेल, शकुन आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, भैरव, ज्योति रानी, गुरमत और मन्नू और इनके साथ हैं केरव। आप हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइमा हसन और नाजिया इब्राहिम, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक, मजनू का टिल्ला से कमल बालूचा, मधु और सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही, परमणि महाराज से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रीतेश, वार्ड नंबर 60 चूरू से हमारे श्रोता हैं, लिखते हैं हरिप्रसाद, महेंद्र, चंद्रकांता, पूजा, प्रेम, श्याम सुंदर, सुनीता, पंकज, पवन, धर्मेंद्र, रूबी, अंजलि, प्रतीक्षा और खुशाल और इन्हीं के साथ में हैं कमल किशोर, माया, तमन्ना, चंद्र प्रकाश, गायत्री नगर चूरू से मनोज, पूनम, मुकेश, रूहानिका, भरत और इनके मम्मी पापा। आप हमारे श्रोता हैं झारिया मोरी चूरू से महेश, मीना, गुंजन, लवीना और इनके सभी साथी, कोर्ट के पास लक्ष्मणगढ़ से श्याम सुंदर, पूजा देवी, सोनू, दीपिका, मोनू, काजल, विनोद, रोहित, भावेश और हिमांशी। आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म तीन देविया से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, मजरू का गीत, एच डी बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में तीन देवियां फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और कार्यक्रम का अंतिम गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से गाने के लिए पसंद आप सभी की शार्दुल शहर श्री गंगानगर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके सभी साथी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अबासी, सिकंदरा राव से मुबीन अबासी और इशरत परवीन, जिला मुरादाबाद यूपी से हमारे साथी हैं मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता कार्तिक, गणेश और परी, स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी और इन्हीं के साथ हैं लड्डू, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय और बेबी किट्टू, गांव कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली और पार्थ, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोत, निखिल कागड़ा और तन्वी बोत, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयन बाबू, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गिल्लिका गित्तिका और इनके सभी साथी, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास, मानिकपुरी, राजादास और रानी, आप हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू सोना मोना, हनी और इनके मम्मी पापा, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत और गुरशब सिंह, दादा बाबू रोड गिडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रानाज और बेबी चाहत और इन्हीं के साथ है सादिया, कासिम कॉलोनी सुनावत से यूनुस खत्री, शफी इद्रीस, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखजिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रसिद्धि और प्रणय और हिरामन सेंडे, एसएम जावेद, सगुप्ता, अंजुम गुमला झारखंड से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, आप हैं हस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, हरियाणा से अंकित कागड़ा, मोनी, प्रिंस बोत, सीताराम और साहिल, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, चैतन्य चंडीगढ़ से हमारे साथी हैं राहुल खुराना, रचिता और केशु खुराना और ये हमारे साथी हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

तो दोस्तों, ये था आप ही की पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम मन भावन। आज के मन भावन कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त केशव देवतावर को, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं एफएम 107 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में चंदन दास की गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं।

आकाशवाणी चूरू से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंदन दास की गाई कुछ करफिल्मी रचनाएं।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंपा मैथी और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। कल पहली सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।